ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026 सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, और उसके बाद में होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 9:20 पर। दोस्तों 9:40 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत आप सुनेंगे फिजियोथेरेपी के प्रति जन जागरूकता विषय पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार बारूडिया से मोहम्मद शरीफ छिपा की बातचीत।

0: दस बजे होगा कार्यक्रम पुराने गाने पुराने जमाने के, और उसके बाद में गाने नए तराने नए। आज 12:45 पर आप सुनेंगे एक विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर विशेष वार्ता, निरक्षरता एक सामाजिक अभिशाप, जिसके वार्ताकार होंगे श्री चंपालाल कुमावत। ये थे खास कार्यक्रम हमारे आज से प्रसारित होने वाले। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 168 निकायों में वोटिंग के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर। वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के पर्युषण पर्व आज से शुरू। मंदिरों में तप, उपवास, ध्यान और साधना के कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसूनी बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश के फिर जोर पकड़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में अलवर, भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर नगर निगम सहित 168 निकायों में मतदान होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। सुरक्षा के बीच अंतिम प्रशिक्षण और चुनाव सामग्री वितरण के साथ मतदान दल संबंधित केंद्रों पर शाम तक पहुंच जाएंगे। कल होने वाले मतदान में 57.5 लाख से अधिक मतदाता 20,600 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए वोटर आईडी सहित 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। इस बार बीएलओ घर घर जाकर मतदान पर्ची नहीं बांटेंगे। मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में स्वयं जांचना होगा। राजधानी जयपुर में भवानी निकेतन परिसर से 2 पारियों में मतदान दल रवाना होंगे। जिले में 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं के 565 बूथों पर पार्षदों के चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग होगी। जयपुर नगर निगम में 11 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं में जोश और उत्साह का माहौल है।
2: सरहदी जिले बाड़मेर में कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में 68 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 32 को संवेदनशील और 20 को अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। इस बीच कल शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रही हैं। अपनी सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: दूसरी ओर दूसरे चरण के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार की सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जागरूकता रैली, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिता के साथ ही नवाचारों के जरिए लोगों को मतदान का कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग भी महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार गतिविधियां आयोजित कर रहा है। हनुमानगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान से संबंधित प्रेरक संदेश की मेहंदी लगाकर जागरूकता संदेश दिया गया। मेरा वोट मेरा अधिकार और पहले मतदान फिर अन्य काम के संदेश के साथ महिलाओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जैन धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक पर्व पर्युषण आज से शुरू हुआ। 8 दिन तक चलने वाले पर्युषण पर्व में जैन समाज के लोग मंदिरों में तप, उपवास, ध्यान और साधना करेंगे। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि जिले के रणकपुर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर में भगवान का आंगी श्रृंगार किया जा रहा है।
3: जैन धर्मावलंबियों का आध्यात्मिक पर्युषण पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। जैन मंदिरों को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया गया है। रणकपुर सहित विभिन्न जैन मंदिरों में भगवान का विशेष आंगी श्रृंगार किया जा रहा है। 8 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में श्वेतांबर समुदाय के श्रद्धालु तप, उपवास, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि का संकल्प ले रहे हैं। पर्व का समापन 15 सितम्बर को संसरी पर परस्पर क्षमा याचना और मच्छमी दुगड़म के साथ होगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: सवाई माधोपुर में भी जैन धर्मावलंबी पर्युषण पर्व के चलते आध्यात्मिक और आत्मिक शांति के लिए कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भरतपुर के बंद बारेठा अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के चलते भी पहचान बनाने लगा है। क्षेत्र में प्रस्तावित बटरफ्लाई पार्क के प्रारंभिक सर्वेक्षण में 27 प्रजातियों की तितलियां दर्ज की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की मौजूदगी क्षेत्र में जैव विविधता का बेहतर उदाहरण है।
4: तितलियां केवल विचरण करती हुई नहीं मिली बल्कि अंडे देने और प्रजनन की गतिविधियां भी इनमें देखी गई, जिससे संकेत मिले हैं कि बंद बारेठा का क्षेत्र तितलियों के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास है और यहां बटरफ्लाई पार्क की मजबूत संभावनाएं हैं। सर्वे में केसिया ऑक्सीडेंटेलिस, केसिया टोरा, केसिया सियामिना, जिजिफस केप्रिस सिड़ा, रोम्बी फोलियो, साल्वाडोरा जैसे प्रमुख होस्ट पौधों की भी पहचान हुई है। इन्हीं प्राकृतिक आधारों को मजबूत करते हुए पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर अब कमजोर पड़ गया है। बीते 24 घंटों में अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। हालांकि कई जगह बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। सवाईमाधोपुर धौलपुर में बारिश थमने से भराव क्षेत्र में पानी उतरने लगा है, लेकिन चंबल नदी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ती जा रही है। नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने के आसार जताए हैं। हालांकि भरतपुर और कोटा संभाग के छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा 15 से 25 सितंबर तक सहायक आचार्य चिकित्सा भर्ती और चिकित्सा विभाग में अन्य भर्तियों के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक, भौतिकी और गणित विषयों में शिक्षकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 168 निकायों में वोटिंग के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर, वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के पर्युषण पर्व आज से शुरू, मंदिरों में तप, उपवास, ध्यान और साधना के कार्यक्रम। और राज्य में मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़ा, मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश के फिर जोर पकड़ने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:10 हुए हैं। ये सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:20 हुए हैं, ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली प्रस्तुति, आवाज शर्मा बंधु की है।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: चंद्रात्मा की गाय सी भक्ति गीत के साथ वंदना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत फिजियोथेरेपी के प्रति जन जागरूकता विषय पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार बारूडिया से मोहम्मद शरीफ छिपा की ये बातचीत।
1: पहला सुख निरोगी काया। शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और दर्द मुक्त रखने में फिजियोथेरेपी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और फिजियोथेरेपी के संबंध में, जन जागरूकता के संबंध में आज हमारे बीच स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर राजकुमार बारूडिया, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं की ओर से नमस्कार।
2: सर, मैं आपका और आकाशवाणी नागौर का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और वह भी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में।
1: डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
2: फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे कि मॉडर्न चिकित्सा के अंदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, बाकी चिकित्सा पद्धतियां अपनी तरीके से इलाज करती है, वैसे भी फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें दर्द और लकवा जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज से, कुछ विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन के द्वारा उनका इलाज किया जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आम तौर पर लोग फिजियोथेरेपी को केवल कमर या घुटनों के दर्द से जोड़कर देखते हैं, किन किन परिस्थितियों में फिजियोथेरेपी उपयोगी हो सकती है?
2: सर, आज के समय में फिजियोथेरेपी का रोल, बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक फिजियोथेरेपी चिकित्सा कारगर है। जैसे कि बचपन में बच्चा पैदा होता है, कुछ विशेष कारणों से न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो जाती है, जिसकी वजह से, जैसे कि बच्चे को पोलियो हो गया या सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी होगी, जिसकी वजह से बच्चा गर्दन भी नहीं संभाल पाता है, करवट भी नहीं बदल पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, उस समय उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उपलब्ध, सही समय पर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उपलब्ध होने की वजह से ऐसे बच्चे भी वापिस चलने योग्य हो जाते हैं, और बाकी दर्द मुक्त जीवन जीने के लिए आम आदमी के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर बैठने से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द की शिकायत बढ़ रही है, इससे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
2: सर, ये सारी आजकल की जो बीमारियां हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये ज्यादा फोन, लैपटॉप पे काम करने की वजह से या लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से होती है। इसके होने का जो कारण है, वह कारण होता है कि गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उनमें स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है।
1: बिल्कुल।
2: और वह स्टिफनेस, अकड़न या कमजोरी किसी दवा गोली से खत्म नहीं होती है, उसको खत्म करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइजेज होती है जिनको करना पड़ता है, जिनको करने से वह जो कमजोर मांसपेशियां हैं वह मजबूत हो जाती है, और कुछ मसल्स के अंदर या जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है, कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करने से वह स्टिफनेस, अकड़न दूर हो जाती है और मरीज को दर्द से मुक्ति मिलती है।
1: बुजुर्गों के लिए जो फिजियोथेरेपी है वो किस प्रकार एक मददगार साबित हो सकती है?
2: सर, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या को, उनका वृद्धावस्था में क्या होता है कि एक आदमी की जो सक्रिय लाइफस्टाइल है वह बदल जाती है, वह ज्यादा समय बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से और बुढ़ापे की वजह से कुछ मसल्स भी कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो उनकी वजह से जॉइंट्स में स्टिफनेस आना करना, ये कॉमन समस्या है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द, ये सारी चीजें चालू हो जाती है। वृद्धावस्था के अंदर भी अगर नियमित रूप से जॉइंट की मूवमेंट की एक्सरसाइजेज हों, उनको मजबूत रखने की कुछ एक्सरसाइजेज हों, तो वह जो दर्द सहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको वो दर्द सहन करने से, करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, और वह बहुत ही आसानी से अपना दैनिक दिनचर्या के कार्य कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, क्या बिना डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के इंटरनेट पर देखकर एक्सरसाइज करना उचित है?
2: नहीं सर, बिल्कुल भी गलत है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में कई बार कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज कुछ योगा कराने वालों की तरफ से भी होती है, और कुछ लोग, कुछ ऐसे जानकार होते हैं, वह लोग भी अपनी जानकारी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर डाल देते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति दर्द से परेशान है तो उसे फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में बताई गई एक्सरसाइज ही घर पर करनी चाहिए, या उसके सेंटर पर फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि वह जल्द ही स्वस्थ हो सकें।
1: डॉक्टर साहब, घुटने और कमर दर्द से परेशान लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कौन सी सामान्य सावधानियां हैं वो हो सकती हैं?
2: घुटना और कमर दर्द, इन बीमारियों के लिए मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। लगातार लंबे समय तक बैठने से जॉइंट में अकड़न, स्टिफनेस आती है। आपको हर आधे घंटे के बाद, चाहे आपके घुटनों का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो, आधे घंटे के बाद आपको चेयर से, पलंग से, बिस्तर से उठकर थोड़ा टहलना चाहिए।
1: जी जी।
2: चाहे आप घर पर ही टहलें और जॉइंट के मूवमेंट करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो घुटने को मोड़ें, सीधा करें, और अगर आपके कमर में दर्द है तो कुर्सी पर बैठें, खड़े हुए आप इस प्रकार से 10-10 मूवमेंट करके जो अकड़न, स्टिफनेस और दर्द से राहत पा सकते हैं।
1: फिजियोथेरेपी को लेकर कुछ लोगों में कुछ गलत भ्रांतियां भी होती हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है एज ए आप फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते?
2: सर, मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए लोगों को यही बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आप सही फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से बिस्तर पर हैं, अगर सही फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट की बताई गई एक्सरसाइज आप घर पर करते हैं, तो आप बिस्तर पर जीवन यापन करने से बच सकते हैं और आत्मनिर्भर जीवन यापन करने योग्य बन सकते हैं।
1: क्या फिजियोथेरेपी केवल बीमारी या चोट के बाद ही जरूरी है या इससे स्वास्थ्य और शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखने भी अपनाया जा सकता है?
2: सर, फिजियोथेरेपी का रोल ना तो चोट से शुरू होता है ना किसी चीज़ से। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चोट से पहले भी, अगर आपकी मसल्स, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं या कुछ विशेष प्रकार की मसल्स को मजबूत करने की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप चाहे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या ऐसे भी अगर आपको चोट लगती है, वह चोट आपको नहीं लगेगी अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप चोटों से बच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी क्यों महत्वपूर्ण है?
2: फिजियोथेरेपी सर इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं लकवा होने के बाद, स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद या वृद्धावस्था में घुटने खराब होने के बाद जो मरीज बिस्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो उठ के अपने दैनिक दिनचर्या के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से वह व्यक्ति आत्मनिर्भर जीवन यापन करने योग्य बन जाता है, यानी कि डेली रूटीन के कार्य करने लायक बन जाता है। वह अपने परिवारजनों के ऊपर बोझ भी नहीं बनता है और अगर वह थोड़े टाइम नियमित रूप से करें तो वो एकदम पूर्णतया स्वस्थ हो सकता है कि बाहर, घर से बाहर जाना या बाजार जाना या जो भी छोटे मोटे कार्य करने लायक वह इंसान बन सकता है।
1: अच्छा, दूसरी बात है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी और स्ट्रोक वाले, तो उनको क्या ये उपचार उनके लिए लाभदायक होता है?
2: सर, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हार्ट के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है और हार्ट की बीमारी की वजह से जैसे पैरालिसिस, स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती है, होने के बाद में भी उनको सही करने में, उनको दैनिक दिनचर्या वह वापस अपना कार्य करने लायक बन सकें,

0: थेरेपी।
1: जी
0: और
1: जी
0: फिजियोथेरेपी का मतलब होता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का जो महत्व होता है वह है कि बीमार आदमी को उसकी कंडीशन के हिसाब से जान करके कौन सी मसल्स कमजोर है, कौन सी मजबूत है, किस में स्टिफनेस है, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। जबकि योगा के अंदर नॉर्मली यही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, योगा का जो महत्वपूर्ण जो टारगेट होता है वो है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना, जबकि फिजियोथेरेपी की जो टारगेट होता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बना के रखना दोनों।
1: कई बार कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद में जब उसके प्लास्टर वगैरह होता है, प्लास्टर उतर जाता है, तब ऑर्थोपेडिक्स होते हैं डॉक्टर, वो सलाह देते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाइए, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: सर किसी भी प्रकार का अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या प्लास्टर करवा दें फ्रैक्चर के बाद में, या सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद में भी अगर जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है तो वह जॉइंट, वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें अकड़न आ जाती है, हड्डियाँ वहाँ की अकड़ जाती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में एक्सरसाइज करने से जो वह अकड़न है वह अकड़न दूर हो जाती है। उसके लिए हम कई प्रकार की टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे डीप हीट थेरेपी, वैक्स थेरेपी, और हम पर्टिकुलरली उस जॉइंट को देख के, एक्सरे वगैरह देख के, उनकी चोट को देख के, किस प्रकार की उनकी चोट लगी है, कौन सी मांसपेशियाँ टाइट हुई है, तो जो टाइट हुई है उनको लूज करने का काम भी करते हैं अलग अलग टेक्निक से, जैसे मसल्स एनर्जी टेक्निक हो गई, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो हमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान, पढ़ाई के दौरान सिखाई जाती है, उनका उपयोग करके हम वो स्टिफनेस अकड़न दूर करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी में मेडिसिन जो होती है, दवाइयाँ, वो कितनी कारगर सिद्ध होती हैं?
0: सर दवाई का अपना अलग रोल है, अगर किसी मरीज को दर्द है तो वह दर्द दर्द निवारक दवाई अगर लेता है तो उससे उसको दर्द नहीं होगा, उसके बाद में वह आसानी से एक्सरसाइज कर पाएगा।
1: बिल्कुल
0: दूसरी चीज़ है कि किसी भी प्रकार का जॉइंट के पेन का पेशेंट होता है, केवल हम बात करते हैं कि केवल एक्सरसाइज करना, केवल एक्सरसाइज भी नहीं है, अगर उस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है, उसके
1: जी
0: अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसकी पूर्ति के लिए आपको कुछ मेडिसिंस या हेल्थ सप्लीमेंट्स आपको लेने जरूरी होते हैं, वह लेकर अगर आप फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है।
1: चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति जो बिस्तर पर अपना जीवन यापन कर रहा है, या कोई बच्चा आपके परिवार में है वह चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर सलाह दें आप, ताकि वह खड़ा होकर आराम से चलें, अपने जीवन यापन करने लायक बन सके।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम भी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं, बल्कि सहज रूप से चलना फिरना और सक्रिय जीवन जीना भी है। किसी भी शारीरिक समस्या में योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत समझदारी है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतनी अच्छी जानकारी दी फिजियोथेरेपी के संबंध में, जन जागरूकता के इस संबंध में, तो आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी नागौर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता फिजियोथेरेपी के प्रति जन जागरूकता विषय पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया से मोहम्मद शरीफ छिपा की बातचीत। आइए सुनते हैं ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गजल मिताली सिंह की आवाज में। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के, यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जिगरी दोस्त से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ही लीजिए सुनिए ये अगला गाना।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म गैम्बलर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये अगला गाना।
1: जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
2: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
2: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
2: नहीं नहीं नहीं

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

किशोर कुमार के गाए फिल्म मशाल के इसी गीत के साथ गाने पुराने ज़माने के यहीं ख़त्म होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। 10:30 हुए हैं, ये सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म दे दे प्यार दे से गैरी संधु और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश।

सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में अभी आपने सुना ये गाना फिल्म सलाम इश्क से। लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए में ये अगला गाना फिल्म तुम मिले से।

के और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जन्नत का ये गाना। इसी गाने के साथ गाने नए तराने नए प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अमर अकबर एंथनी, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये पेशकश आपने अभी सुनी। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हरिहरन की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम रंग तरंग की ये अगली पेशकश।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

0: तलत अजीज की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे जान एल्बम से, फैज अनवर ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत।

0: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना, बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना

0: कंचन, मनोहर उदास और आनंद की आवाजों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर विशेष वार्ता, निरक्षरता एक सामाजिक अभिशाप। वार्ताकार हैं श्री चंपालाल कुमावत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। श्रोताओं, आज 8 सितंबर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें हमें अपने समाज की तस्वीर देखनी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे, आपके और इस देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है, किताबों से निकलकर ज्ञान का प्रकाश बहने दो, हर एक हाथ में शिक्षा की मशाल रहने दो, अंधेरा खुद ब खुद हट जाएगा इस जहां से, तुम बस जहन में साक्षरता की ज्योत जलने दो। आज की इस विशेष वार्ता में हम उस अंधकार की बात करेंगे जिसे हम निरक्षरता या असाक्षरता कहते हैं, उस रोशनी की बात करेंगे जो साक्षरता के रूप में हमारे जीवन को बदल देती है, निरक्षरता का अभिशाप और जमीनी हकीकत। श्रोताओं, सच कहें तो निरक्षरता केवल अक्षरों को नए पहचान पाने का नाम नहीं है, निरक्षरता इंसान के जीवन में एक अभिशाप की तरह होती है। यह एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो मनुष्य की सोच और विकास के दायरे को बांध देती है। जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता है तो सबसे पहले नुकसान उसके मस्तिष्क को होता है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, वह सोचने का नजरिया देती है, तर्क करने की क्षमता देती है। एक ऐसा अक्षर व्यक्ति जीवन भर अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, लेकिन वह कभी यह समझ ही नहीं पाता कि उसकी गरीबी, उसके पिछड़ेपन या उसकी लगातार आ रही समस्याओं का असल कारण क्या है। और जब हम किसी समस्या का मूल कारण ही समझ नहीं पाते तो उसका सही समाधान खोजना नामुमकिन हो जाता है। आइए इसे बहुत छोटे और व्यावहारिक उदाहरणों से समझते हैं। आर्थिक ठगी। एक निरक्षर किसान या मजदूर दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन जब वह अपनी फसल बेचने जाता है या मजदूरी का हिसाब लेता है तो महज जोड़ बाकी न आने के कारण उसे आसानी से ठगा जा सकता है। दैनिक जीवन में असहायता। जब कोई व्यक्ति बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है और बस या ट्रेन की पट्टिका पर लिखा शहर का नाम नहीं पढ़ पाता तो उसे हर कदम पर दूसरों के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खतरा। दवा की शीशी पर लिखी एक्सपायरी डेट या सही खुराक न पड़ पाने के कारण कई बार लोग अपने ही परिजनों की जान जोखिम में डाल देते हैं। अंगूठे का निशान बनाम हस्ताक्षर। आज के डिजिटल युग में भी जब किसी व्यक्ति को अपने ही अधिकार के कागजात पर बिना पढ़े अंगूठा लगाना पड़ता है तो उसका आत्मसम्मान भीतर से चोटिल होता है। निरक्षरता इंसान से उसका आत्मविश्वास छीन लेती है, वह समाज में पीछे छूट जाता है और उसका जीवन शोषण के साय में बीतता है। एक सच्ची प्रेरक कहानी। श्रोताओं, व्यक्ति यदि ठान ले तो जिस निरक्षरता को हम अभिशाप कहते हैं उसे वरदान बना सकता है। जो बात मैं कह रहा हूँ उसे सिद्ध करने के लिए आइए मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित सफलता की कहानी सुनाता हूँ। अक्षरों की रोशनी, अनपढ़ से प्रेरणा बनी शांति देवी की कहानी। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, घरों की रसोई, खेतों की मेड़ और मजदूरी करते हाथों में लिखा जाता है। यह कहानी है शांति देवी की, एक ऐसी महिला की जिसने हालातों से हार मानने के बजाय अक्षरों को हथियार बनाया और अपनी तकदीर ही नहीं आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बदल दिया। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन ब्लॉक की ग्राम पंचायत जिलिया। विवाह के बाद डीडवाना ब्लॉक के कीचप ग्राम से यही बहू बनकर आई थी शांति देवी। उस वक्त वे बिल्कुल निरक्षर थी, पीहर में कभी स्कूल नहीं जा सकी। हालांकि शांति देवी में पढ़ने का जज्बा बचपन से ही था, लेकिन पारिवारिक हालात ऐसे थे कि वे पढ़ नहीं पाई। साल 2005 में राज्य सरकार की ओर से महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय असाक्षर महिला शिक्षण शिविर शुरू हुए। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जिलिया में ऐसा ही एक शिविर लगा। यहीं साक्षरता प्रेरक गीता पारुपाल की प्रेरणा से

और शांति देवी ने कक्षा 5 के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब आगे की राह बंद लगी तब भी उन्होंने रास्ता खुद बनाया। स्थानीय संस्कृत विद्यालय से स्वयं पाठी बनकर शांति देवी ने 2011 में 8वीं कक्षा पास की। समय आगे बढ़ता रहा, साल 2023 में आया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस अवसर पर कुचामन सिटी के ब्लॉक स्तरीय समारोह में शांति देवी को मंच मिला। उन्होंने अभिव्यक्ति दी, साक्षरता गीत गाया और सम्मानित हुई। उस दिन उन्होंने एक नया संकल्प लिया, अब 10वीं कक्षा भी पास करनी है। साल आया 2025। इस वर्ष 21 जनवरी के दिन जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम उल्लास मेला आयोजित हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों नवसाक्षर, स्वयंसेवी शिक्षक, साक्षरता अधिकारी संभागी थे और शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिनावर सहित विभागीय उच्च अधिकारी भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान शांति देवी अपनी अभिव्यक्ति के लिए मंच पर आई, शुद्ध हिंदी में अपनी कहानी कही और राजस्थानी में गाया साक्षरता गीत। इस दौरान पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भाव विभोर हो गए। उन्होंने शांति देवी को अपने हाथों से गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। यही नहीं, उन्होंने अपने उद्बोधन में बार बार शांति देवी का नाम लिया। इसी कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि साक्षरता कार्यक्रम केवल अक्षर ज्ञान नहीं औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का माध्यम भी है। 38 वर्ष की उम्र वाली शांति देवी ने घर, मजदूरी और पढ़ाई तीनों की जिम्मेदारी एक साथ संभालते हुए स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दे दी। ये सिलसिला जारी है। शांति देवी का लक्ष्य है कि जल्द से वो 10वीं कक्षा के भी सारे पेपर उत्तीर्ण करके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करेगी और आगे भी पढ़ने का सपना पूरा करेगी। किसी दौर में पूरी तरह निरक्षर रही शांति देवी आज सिर्फ खुद ही साक्षर नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया और अपने बच्चों को उस उच्च शिक्षा दिलवाई। उनका बेटा कंप्यूटर सेंटर संचालक और कोचिंग शिक्षक है। बेटी ने भी बीएड कर ली है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी है। खुद शांति देवी भी अब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में लोगों को साक्षर करने में अहम भूमिका निभा रही है। शांति देवी साक्षरता से जुड़े कार्यक्रमों में मिसाल बनकर असाक्षरों और स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रेरित करती हैं। शांति देवी आज राज्य भर में प्रेरणा का नाम बन चुकी है। प्रशिक्षण शिविरों में भी उनके वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। उनकी कहानी लोगों को पढ़ने के लिए हौसला देती है। शांति देवी की उपलब्धि से उत्साहित होकर साक्षरता विभाग ने बुनियादी साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण योग्य नवसाक्षरों को स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दिलवाने की कवायद शुरू कर दी। शांति देवी की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है कि अगर इरादा मजबूत हो तो अक्सर सिर्फ किताबों में नहीं जिंदगी में भी उजाला भर देते हैं। शांति देवी का कहना है, जब मैं निरक्षर थी तो दुनिया को दूसरों की आंखों से देखती थी, जब मैं साक्षर हुई तो मुझे अपनी खुद की आंखें मिल गई। शांति देवी की ये कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि साक्षरता के उजियारे से मनुष्य को का कैसे कल्याण हो सकता है। साक्षरता केवल एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरे समाज और देश के ढांचे को बदल देती है। जब एक मनुष्य साक्षर होता है तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास संभव होता है। साक्षरता मनुष्य में वैज्ञानिक सोच और तार्किक क्षमता विकसित करती है, वह अंधविश्वासों और कुरीतियों के जाल से बाहर निकालता है। साक्षरता आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने का एक सशक्त साधन है। एक साक्षर व्यक्ति बेहतर रोजगार पा सकता है, बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन सीख सकता है और अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकता है। साक्षरता से मनुष्य के स्वभाव और पोषण में सुधार संभव हो पाता है। साक्षर माता पिता अपने बच्चों के टीकाकरण, स्वच्छता और सही पोषण के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे बाल मृत्यु दर कम होती है। साक्षरता हमारे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। एक साक्षर व्यक्ति को डराना या दबाना आसान नहीं होता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां डिजिटल साक्षरता का दौर है। आज बैंक आपके मोबाइल में है, सरकार की योजनाएं आपके फोन पर हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से भी निरक्षर है तो वह इस आधुनिक क्रांति से पूरी तरह कट जाता है। इसलिए आज साक्षरता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। प्रिय श्रोताओं, अब सवाल ये उठता है कि निरक्षरता को मिटाने

के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? जी नहीं, सरकारें नीतियां बना सकती हैं, स्कूल खोल सकती हैं, अभियान चला सकती हैं, लेकिन निरक्षरता के अंधेरे को मिटाने के लिए समाज के हर नागरिक को दीपक बनना होगा। अगर आपके घर में काम करने वाली कोई सहायिका है, आपका माली है, आपका रिक्शा चालक है, या आपके गाँव का कोई ऐसा बुजुर्ग है जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो क्या हम दिन में आधा घंटा उन्हें नहीं दे सकते? जरा सोचिए, यदि हम अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति को साक्षर बना दें, उसे नाम लिखना, बस का नंबर पढ़ना और बुनियादी हिसाब किताब करना सिखा दें, तो हम उसके जीवन से अंधेरा मिटा देंगे। शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बांटने से कम हो जाए, यह जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगी। अभी राजस्थान सहित पूरे भारत में चल रहे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर पढ़ें पढ़ाएं। आइए थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में भी जानें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में संचालित सभी के लिए शिक्षा की एक योजना जिसका नाम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में 15 वर्ष और ऊपर की आयु के असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य 5 घटक शामिल किए गए हैं: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास एवं सतत शिक्षा। महत्वपूर्ण जीवन कौशल में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कौशल, बाल देखभाल और शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आहार संबंधी आदतें, तंबाकू के उपयोग की समाप्ति, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, सड़क यातायात दुर्घटना का प्रबंधन, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन आदि जीवनोपयोगी कौशल शामिल किए गए हैं। असाक्षरों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्वयं शिक्षकों द्वारा साक्षरता कक्षाओं का संचालन किया जाता है, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर शिक्षण कराया जाता है। ये स्वयंसेवी शिक्षक बनकर इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कक्षा 5 और ऊपर के स्कूली छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, NSS, NCC, BEd, MEd आदि के छात्र, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, PRI सदस्य, सरकारी स्कूलों के शिक्षक, निजी स्कूलों के शिक्षक, भूतपूर्व सैनिक आदि। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री, प्रवेशिका पुस्तक और स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका साक्षरता विभाग की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। और हाँ, वर्ष में 2 बार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का निःशुल्क आयोजन नजदीकी सरकारी विद्यालय में किया जाता है, तथा परीक्षा उपरांत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आइए इस साक्षरता दिवस पर हम सब मिलकर एक पवित्र संकल्प लें। अज्ञानता और निरक्षरता के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटाना है। हर घर में, हर गली में साक्षरता का उजियारा फैलाना है। अंगूठे के निशान को अब कलम की ताकत देना है। हर एक निरक्षर मन में अब ज्ञान का दीपक जलाना है। ना रहे कोई महरूम शिक्षा के उजियारे से। आज साक्षरता दिवस पर यही संकल्प दोहराना है। साक्षर बनिए, सशक्त बनिए और देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। जय साक्षरता।

0: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर, विशेष वार्ता निरक्षरता एक सामाजिक अभिशाप। वार्ताकार थे श्री चंपालाल कुमावत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कल 168 निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए आज मतदान दलों की रवानगी हो रही है। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण और चुनाव सामग्री वितरित की गई है। कल होने वाले मतदान में 57.5 लाख से अधिक मतदान

0: दाता 20,600 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए वोटर आईडी सहित 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी ओर दूसरे चरण के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार की सरगर्मियां बनी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनका कल राजधानी जयपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम है। जयपुर जिले की 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं में कल वोट डाले जाएंगे, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 11 सितंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 14 तारीख को होगी और अध्यक्ष का चुनाव 20 सितंबर को किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन देन, अपात्र आईटीसी, बिना वास्तविक आपूर्ति के बिल जारी करने जैसी विसंगतियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। विभाग की प्रवर्तन टीमों ने जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और डीडवाना कुचामन में जांच कर 2.25 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा करवाई है। इन जिलों में करदाताओं के व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण कर और जांच कर करदाताओं से 1.93 करोड़ रुपए की बकाया जीएसटी को पकड़ा है। टीएम ने जयपुर की एक ट्रैवल फर्म से करीब 1.40 करोड़ रुपए के जीएसटी का भुगतान करवाया है। इसी तरह अलवर में 2 तेल फर्मों से 40 लाख रुपए और सवाई माधोपुर में करीब 29 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। भारत ने अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास को लेकर अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक की मुलाकात के बाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध गायक और पूर्व सांसद भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस महान गायक के गीतों ने लोगों को करीब लाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका का जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डॉ. हजारिका को उनकी जयंती पर नमन किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कहा कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर 1:05 हुए हैं। ये सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: है पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट,

0: 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सिलसिला फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में, और शिव हरी का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हाँ सवाल जवाब जरूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नजरों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नजर से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम

सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग लाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां हैं। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है। और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता है जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे। और मोटरबोट का सफर, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीज़ें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही है। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है। और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम में जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था सिलसिला फिल्म से, उस गीत के लिए काफी सराहना आई है और ये भी कहा गया है, हमारी श्रोता लिखती हैं कि काफी दिनों के बाद ये गीत उन्होंने सुना है और लिखती हैं कि ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सुरीला सुरीला सफर में ये आता तो दोपहर में है, लेकिन इबारत की इबादत से पता चलता है कि इबारत भरी दोपहर में शाम की बातें हो रही है, नजरें मिलती हैं, थोड़ी बहुत झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपकी लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेंगी। ये भी अच्छी बात है, जो जहाँ है बस उसे इंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नव वधू या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर महसूस होता है, तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा ठहरना भी जरूरी है और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत जरूरी होता है, ये पड़ाव बहुत जरूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही इबारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होले से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन सकता है, बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतजार है आपके उन संदेशों का। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूं अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये जरूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, ना शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नजर काफी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहाँ दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स से भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुंच जाते हैं। तो आज जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में जहाँ एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं कि आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह

से संभाल के रखिए। क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठकर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फोन की तस्वीरों में? लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहां जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहां। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप जब पहुंच जाएं, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को संजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त जरूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत जरूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मजा आता और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देख कर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक, आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेषकर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है, और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा है इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथ ही ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: जा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: होता है?
1: तीतर।
0: जगदीश।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी, और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे, तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
7: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
7: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
7: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
6: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
8: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है।

0: रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
5: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

तुमसे कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाँ।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
0: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
1: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा, उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं। तो
0: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए, तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं। और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि एयू क्लोज्ड, याद होगा है ना?
1: आपने बिल्कुल तो, सही कहा आपने, क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे।
0: तो एक मिनट इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया, प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर की जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी, तो पन्ना पलटते थे, एयू क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखिए, बहुत संक्षेप में लिखिए हमारे श्रोता, है ना?
1: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी किताबों से अखबारों से सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
0: अच्छा जरा बताइए तो, शिक्षा क्यों जरूरी है?
1: भाई अगर शिक्षा अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ी क्या पाएंगे, किताबें शून्य नजर आएंगी।
0: और किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी?
1: किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना? तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है और साथ में आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है? खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा होता है घरों में, वो भी बताया।
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ jombe.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखिए शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चे को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीजें अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है। और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहां पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही
0: जी
1: शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन
0: जी
1: पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात
0: जी
1: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं
0: बिल्कुल
1: माता पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत जरूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहां से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है, और इसके साथ साथ ममता जी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल, और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
0: जी
1: कि ठीक है, इन्हें क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है, महिलाओं को भी लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
0: जी
1: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
0: दुनिया होती है
1: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
0: जी
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
0: बिल्कुल आपने
1: तो
0: बहुत सही
1: अगर
0: बात
1: वो
0: की
1: शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी। और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं, बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है, उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान, कौशल, आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ, jombe.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर Jombe की सह स्थापना की। आखिर Jombe क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है। तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार, क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इनका जन्म हुआ था, पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहां से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई। वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर Jombe की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी। एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे। और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी, लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी। उन्होंने Jombe को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने Jombe के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि वाघ की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं एक गाना।

0: तो अब घड़ी की ओर देखिए, एक अंतराल का समय हो चुका है, तो अंतराल के बाद वापस कुछ बातें लेकर हम आते हैं।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
0: बातों में उन्होंने लिखा है ना, पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, और हमारी एक सखी है जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ। उनकी एक टिप्पणी है, मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया, पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं, और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है। मगर अब आज का जो जमाना है, वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। ये सारी मैगजीन, चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो 2-3 अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती
4: बिल्कुल थी। आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी, और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
4: थे, भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे। देखिए अंत में शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
4: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे, और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था, और देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या कोई
4: कार्टून का भी रहता
0: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था, तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठाकर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकलें लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
4: लेकिन शिक्षा का यही फायदा हुआ ना, कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए,
0: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
4: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है, तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
4: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
0: वर्ग पहली होती
4: हाँ,
0: थी
4: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
0: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
4: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है, पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
0: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है। और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सकें, आसमान के तारों की पहचान कर सकें या फिर देश दुनिया के बारे में जान सकें, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं।

0: ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है, तो वो चीज मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
0: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा, और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
1: वही मैं कहने वाली थी। और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका
0: है। और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूं और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूं, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट ना जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बाद में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे, तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे उस समय इंदौर में। पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ।

0: रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह देखती हूँ।
1: सही बात,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे,
1: बिल्कुल
0: रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा,
1: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही करते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुन

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर

0: देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया। अंतर क्या है? कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल ये बात, बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
3: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावां, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है, और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
3: जी,
4: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूं, और दूसरी तरफ

0: बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ. इट्स एन
1: जी,
0: ऑनर.
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
0: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है. हम
1: जी
0: लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, टीचर टीचर नहीं खेला
1: जी
0: होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा. और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं. बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो
1: जी
0: उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं. सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर. मुझे लगता
1: जी
0: है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था. तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस.
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी,
0: हाँ
1: लेकिन जब ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
0: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा. और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था
1: जी
0: अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहां बैठा हूं विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए. और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था. और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के
1: जी
0: दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ. तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था. तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया. तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया. और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको,
1: जी
0: दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया. तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का.
1: जी तो एक बेस बन गया आपका वहां काम
0: हाँ,
1: करते
0: बेस बन
1: करते।
0: गया.
1: जी,
0: एब्सोल्युटली.
1: तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो
0: हाँ
1: मुंबई
0: हाँ
1: का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी? किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
0: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में. और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम
1: जी
0: लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे, हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए,
1: जी
0: हम बिल्कुल बेघर हो गए थे. उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की. और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया, कि
1: अच्छा
0: मुंबई इसलिए आऊंगा
1: जी
0: कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा. और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा. और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो
1: जी
0: होती है ना वो इंसान को चुनती है. सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा. पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं.
1: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित, मुल्क की अगर हम बात
0: हाँ,
1: करें?
0: मुल्क था और वो
1: जी
0: पार्टीशन पे ही था पूरा. और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत, ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है. और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया,
1: जी
0: मुझे अच्छे शोज मिलते गए. और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस
1: जी
0: गॉड ही रह गया. सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है. कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे.
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही थी, क्यों ना एक अच्छा सा

0: गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला ले?
1: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
0: जीना या मरना या?
1: जी हाँ।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं।
1: जी
0: जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए,
1: जी
0: कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है
1: जी
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद, जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो वो
0: जी
1: उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था। उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय, मैं ये दोनों शोज कर रहा था। ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा,
0: जी
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइप कास्ट
0: टाइपकास्ट
1: कर दिया जाता है
0: जी
1: एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे, तो कभी भी
0: हाँ
1: फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो एज अ कलाकार मैं

0: ग्रो कैसे करूंगा?
1: जी
0: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो.
1: जी
0: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए. तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है. क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी. तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा.
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है.
0: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है.
1: जी
0: अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है.
1: जी
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहां तक पहुंचा. अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता
1: जी
0: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना. और
1: जी
0: आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी,
1: जी वो स्वीकार
0: सिर्फ
1: करना बहुत
0: सिर्फ
1: जरूरी है.
0: उनकी वजह से. मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान, मैं
1: जी
0: मानता हूं, यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहां पर बैठकर बात कर रहा हूं.
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ही ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको और
0: बिल्कुल
1: स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी
0: बिल्कुल,
1: बात है.
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा.
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है.
1: जी
0: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त, चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के, मुस्कुराते हुए, उसका समाधान पे ध्यान दे के, प्रकृति पे, ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था. मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा.
1: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है. आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं. तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ,
1: जी
0: और मैं उनके मंदिर जाया करता था, और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ. उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी था उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ. और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था. और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था,
1: जी
0: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा, कि मैं नंगे पैर चलता था जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को, आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ.
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत.
0: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय.
1: आनंद फिल्म से
0: बिल्कुल.
1: जी.

0: तो विनीत ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे मतलब बस आते हैं कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हों, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पर आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
0: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
1: मेरा जो
0: कितने घंटों का?
1: पॉपुलर शो था मायका, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
0: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें
1: हाँ,
0: ब्लास्ट
1: जिसमें
0: के थ्रू इनका।
1: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूं। तो ये
0: और तब तक
1: बहुत,
0: बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आके
1: फिर
0: वहां पर
1: जब
0: शूट।
1: ये 2 दिन मैं सोया हूं, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
0: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है,
1: सारी
0: क्योंकि
1: यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, सो बहुत ड्रेनिंग था। लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
0: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
1: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
0: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता
1: जी
0: नहीं है,
1: हाँ
0: सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी. जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले. तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है, अपना अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से. तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को,
1: जी
0: क्योंकि कई बार
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस.
1: ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और
0: जी
1: यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौटकर चले जाते हैं।
0: जी
1: क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है।
0: जी
1: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं, वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं।
0: जी
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट, आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया।
0: जी
1: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है।
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से बड़ा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
0: जी
1: वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके तुरंत कि हमने ये
1: क्लब्स
0: सब
1: में
0: करा है.
1: जाते हुए या
0: जी
1: पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में ही बंद हो जाए। सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
0: जी
1: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं। उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
0: कल क्या
1: बहुत
0: होगा कल
1: जरूरी
0: को रहना है.
1: चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
0: जी और जैसे कि अब इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे।
0: जी
1: अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
0: जी
1: बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो
0: जी
1: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है।
0: जी
1: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
0: जी
1: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं, वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है, कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
0: जी।
1: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है, कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना जरूर

0: पूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार
1: जी,
0: मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं,
0: जी हाँ
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
1: जी
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूं मैं जब भी
1: जी
0: मैं वहां जाता हूं। और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें।
1: जी
0: ये एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है, जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूं जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहां रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं
1: जी
0: चाहता हूं कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
1: जी
0: वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है
1: जी
0: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहां गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
1: जी
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन
1: पहुंच गए
0: एक्टर
1: जी
0: वहां कैसे हूं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब
1: यहाँ भी
0: यहाँ
1: फैन
0: के
1: फॉलोइंग है
0: लोकल लोग तुम्हें
1: एक्चुअली
0: पहचान रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक
1: जी
0: इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा,
1: जी
0: मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो, मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली,
1: जी
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ।
1: जी।
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो।
1: जी।
0: He was the part of the show. He was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मेरा फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची
0: तो बस
1: एनी डे, मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूं और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी,
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागवान
1: अपने
0: से पहले ये देखी जाती
1: हाँ,
0: थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा यू नो, जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता है ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी, सुपर

0: डुपर बिग
1: स्टार
0: स्टार,
1: थे जी, उनका एक अलग ही चार्म था। नमक
0: अलग ही
1: हलाल,
0: चाम था।
1: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
0: बिल्कुल
1: वो आते हैं, कुछ और
0: बिल्कुल,
1: बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
0: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
1: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
0: हाँ,
1: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
0: ये
1: जा
0: सब
1: सकता है।
0: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
1: जी,
0: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
1: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है। तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
0: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
1: जी
0: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
1: जी
0: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है,
1: जी
0: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
1: जी
0: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका
1: जी
0: विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: जी
0: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो
1: विनीत रैना
0: विनीत
1: बन
0: रैना है
1: जी
0: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
1: जी,
0: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
1: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। शायद इतने साल से
0: देखिए,
1: काम
0: हमेशा
1: करते
0: तो
1: करते आपको ये
0: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे, तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है,
1: अच्छा
0: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
1: जी
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सेक्रीफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए,
1: जी,
0: और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
1: एक
0: मेंटेन करना
1: बैलेंस
0: आसान रहता है।
1: जी, और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
0: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है
0: इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
1: बिल्कुल।
0: चांदनी

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है,
0: क्रश जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता
1: हाँ,
0: है गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था, तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?

0: क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
1: चैन
0: कहाँ
1: का
0: रे
1: रहे
0: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूँगा।
1: तो वही गीत यहाँ सुन भी लेते हम।
0: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हम अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ होने या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त टी आर इंदा। कीजिए स्वीकार प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बदलते मौसम में भी अपना ख्याल रखते होंगे। दोस्तों आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन युवाणी में खास सेगमेंट होता है आपकी पसंद। अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर है 240-168 और नागौर के एसटीडी कोड है 015-85। दोस्तों ये तो रही फ़ोन की बात और आज है 8 सितंबर और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई को पाटने पर विषय पर। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो हर वर्ष 3 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और साक्षरता किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति की बुनियाद है। लेकिन आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या केवल पढ़ लिख जाना ही पर्याप्त है? निश्चित रूप से नहीं। आज लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनके पास ज्ञान है और अपने भविष्य को लेकर सपने भी हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। यहीं से शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई का सवाल सामने आता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में कई बार विद्यार्थी किताबों और परीक्षाओं तक सीमित रह जाते हैं। वे अच्छे अंक तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब वास्तविक कार्य क्षेत्र में जाने का समय आता है तो उन्हें व्यवहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल की कमी महसूस होती है। दूसरी ओर रोजगार देने वाले संस्थानों और उद्यमों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता होती है जो हम अपने विषय के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, संचार कौशल, कंप्यूटर ज्ञान और समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसी टॉपिक पर तो बात करते हैं। इसलिए आज जो कि उद्यमता है उनको ये आवश्यकता होती है कि शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न मानकर कौशल और रोजगार से जोड़ा जाए। स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को अलग अलग कौशल सीखने का अवसर मिलने चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल तकनीकी, भाषा और संचार कौशल, वित्तीय जानकारी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज रोजगार के क्षेत्र तेजी से बदल रहे हैं। जहां पहले रोजगार के कुछ सीमित क्षेत्र हुआ करते थे वहीं आज डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि तकनीकी और अनेक नए क्षेत्र युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं को भी समय के साथ अपने कौशल को बदलना और बढ़ाना होगा। डिग्री के साथ साथ दक्षता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें ये भी समझना होगा कि हर युवा का लक्ष्य सरकारी नौकरी ही हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी के पास सिलाई का हुनर है, कोई अच्छा कारीगर है, कोई खेती में तकनीकी शिक्षा अपना सकता है और कोई डिजिटल सेवा दे सकता है और कोई अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है। यही सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर मिले तो यही हुनर रोजगार का साधन बन सकते हैं। इसलिए रोजगार और उद्यमिता को भी शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बल्कि कई बार सही जानकारी और अवसरों तक की पहुँच की कमी होती है। यदि गांव में युवाओं को उनके आसपास उपलब्ध रोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं को सही जानकारी मिले तो वह अपने क्षेत्र में रहते हुए भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी तरह महिलाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल के समान अवसर देना भी ज़रूरी है। जब एक महिला प्रशिक्षित होती है, आत्मनिर्भर बनती है और आत्मनिर्भर बनती है तो उनका लाभ केवल उसी ही नहीं मिलता बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी मिलता है। हमें दिव्यांग युवाओं के लिए एक ऐसे प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे जहां उनकी क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग हो सके। शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटने के लिए सरकार शिक्षण संस्थानों, उद्यमों, सामाजिक संस्थाओं और परिवार सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षण संस्थाओं ने केवल किताबों का ज्ञान देने के बजाय विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से परिचित कराना होगा। इंटर्नशिप, व्यवहारिक प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार मेलों का बढ़ावा देना होगा। साथ ही युवाओं को ये भी समझना होगा कि सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक की सीमित नहीं है। आज के बदलते समय में जीवन भर सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। कई नई तकनीकें आएगी नए रोजगार आएंगे और कुछ पुराने रोजगार खत्म भी होंगे। इसलिए जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा उसके लिए अवसरों की कमी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें ये संदेश देता है कि साक्षरता का उद्देश्य केवल व्यक्ति को पढ़ाना लिखाना सीखना नहीं, बल्कि साक्षरता का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को जागरूक बनाना, कौशल के माध्यम से सक्षम बनाना और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम संकल्प लें कि शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम ऐसे शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करें जहां युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला भी बने, क्योंकि शिक्षा ज्ञान देती है, कौशल उस ज्ञान को शक्ति देता है और रोजगार उस शक्ति को आत्मनिर्भरता में बदल देता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर हाथ में हुनर हो, हर युवा के पास अवसर हो, हर शिक्षा रोजगार से जुड़ी हो और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। इसी सोच के साथ दोस्तों आज की बात को यहीं विराम देते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे आपकी पसंद पर।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: दोस्तों अब कार्यक्रम में लेते हैं आपकी फरमाइशों को और सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल करते हैं नागौर के अमर सिंह कॉलोनी से। ये फरमाइश हमें टेलीफोन करके भेजी है, भेजने वाले हैं मैना जाखड़, उमा जी और गीता जी ने। इन्होंने सुनना चाहा फिल्म सरगम का ये गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: दोस्तों, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं फिल्म यलगार से। भेजने वाले हैं अनवर हुसैन नागौर से।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। धैर्य रक्षिता और कृष्णा सोनी ने ये फरमाइश भेजी है नागौर से, और उन्होंने फरमाइश की है फिल्म मासूम की इस गीत की।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं सरस्वती की, और सरस्वती ने ये फरमाइश भेजी है डीडवाना बाईपास पाठक से, नागौर से, और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत है।

दोस्तों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं मुकेश शर्मा की। मुकेश शर्मा ने ये फरमाइश भेजी है अमर सिंह कॉलोनी से और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अभिमान का गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं फिल्म वक्त से। इस गीत की फरमाइश की है कुमाराम चावला ने और इन्होंने फरमाइश की है शास्त्री नगर नागौर से।

दोस्तों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। अरुणा ने ये फरमाइश भेजी है और इन्होंने भेजी है बरली नागौर से, और इन्हीं के साथ एक और फरमाइश भेजी है मोहम्मद सुलेमान ने नागौर से। इन दोनों ने फिल्म रेड का गीत सुनना चाहा है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं कोमल की। कोमल ने ये गीत सुनना चाहा है नागौर के राठौड़ी कुआं से, और उन्होंने फिल्म भूमि का ये गीत सुनना चाहा है।
1: हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। होने वाले मियां के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, होने वाले मियां के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है, खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं। दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम में आखिरी ये जो फरमाइश है अब हम शामिल कर रहे हैं, यशोदा ने भेजी है राठौड़ी कुआं नागौर से, और उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म हम साथ साथ का ये गीत।

तो दोस्तों ये तो था आज का युवाणी कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपके दोस्त टी आर इंदा को दीजिए इजाज़त। किसी फिर से ऐसे ही प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरणा से बोल रहे हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मिले जगत सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों लेकर हाजिर हैं आपका अपना मन भावन कार्यक्रम और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा से। चर्चा हमने रखी है आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जी हाँ, साक्षरता जो प्रत्येक का राइट बनता है, अधिकार बनता है और मौलिक अधिकार है हमारा कि हम जो है कम से कम अक्षर ज्ञान जरूरी से लें। एजुकेशन शिक्षा जो है वो प्रत्येक नहीं ले पाए तो भी प्रत्येक कम से कम साक्षर तो हो ही हो, इसी बात को ध्यान में रख के जो है साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। तो जब हम बात साक्षरता की करते हैं तब हमारे सामने आ जाता है हर साल ये 8 सितंबर का दिन, और जो यूनेस्को है 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया था। पहली बार इसको 1966 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर साक्षरता के महत्व को समझना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना था। और कहीं ना कहीं इस बात से बहुत फ़ायदा भी हुआ है, हमने साक्षरता दर को तो जो है ठीक किया ही किया है, इसके साथ साथ शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 2026 का अगर हम थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो थीम है वो है लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोगों की समृद्धि हो, पृथ्वी की समृद्धि हो और जो है साक्षरता है उसकी भी समृद्धि हो, यानी साक्षरता का जो लेवल है वो भी बढ़े। तो इस तरह से ये दिन हमें वो महत्व बताता है कि प्रत्येक के लिए जो साक्षरता है वो कितनी जरूरी है। हमें चाहिए कि हम जो है अपने आसपास वाले लोगों को जागरूक करें, जो अक्षर ज्ञान नहीं जानते हैं अगर वो किसी ना किसी तरह से इच्छुक हैं कि हम अक्षर ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको अक्षर ज्ञान देने की कोशिश करें। तो अगर कोई नहीं चाहता है कि जो है हम नहीं लेना चाहते तो भी हम उनको महत्व बताएं। जब हम उनको महत्व बताएंगे कि साक्षरता के ये फ़ायदे हैं तो जो प्रत्येक मनुष्य है वो चाहेगा कि मैं कम से कम अक्षर ज्ञान तो मैं ज़रूर ही लूं। और अगर हम प्रत्येक मनुष्य जो भी पढ़े लिखे हैं अगर हम ये ठान लें कि हम जो जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है और हम अपने जीवन में 10-10 लोगों को अक्षर ज्ञान देंगे तो भी हम जो साक्षरता की जो दर है उसको हम बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा और अशिक्षा का मुकाबला करना तो जो है इससे हमें सीखना ही सीखना पड़ेगा। साक्षरता दिवस अगर हम मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे जो है हमारा हम सब का सतत विकास होता है और प्रत्येक विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। आज जो है साक्षरता दिवस के साथ साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है। हर साल 8 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। स्वास्थ्य सेवा में फिजियोथेरेपिस्ट जो है शारीरिक चिकित्सकों का बहुत योगदान रहता है और जब हमें चोट इत्यादि लग जाती है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी के बिना हम नॉर्मलाइज कई बार नहीं हो पाते हैं, तो उस दशा में जो है फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस दिवस की शुरुआत जो 1996 में की गई थी, 8 सितंबर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन 1951 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी जो है संगठन की स्थापना हुई थी। और वर्ष 2026 का जो थीम है वो रखा गया हृदय रोग और स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, जो जरूरी भी है क्योंकि अब जो हृदय रोग संबंधी जो जितने भी रोग हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी इसकी लपेट में आ रहे हैं क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे जो संवेग हैं वो उन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सतत विकास की ओर तो हैं पर कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं और वो मूल्य कई बार हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे होते थे जो कहीं ना कहीं अब छूटते जा रहे हैं और हम मैकेनिकल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, मनुष्य अब मशीन युग की तरफ जा रहा है और उसी के चलते जो है हृदय संबंधी जो दिक्कतें हैं वो अब ज़्यादा
शुरू हो रही हैं। तो जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए हृदय और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, दर्द का प्रबंधन जो है फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, बिना दवा के या कम दवाओं के पुराना जो दर्द है वो फिजियोथेरेपी की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। गतिशीलता और संतुलन की जब बात करते हैं, बढ़ती उम्र हो या दुर्घटना हो, तब फिजियोथेरेपी ही हमारे काम आती है। तो आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सखियों, अब हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप पर, हाइपरटेंशन भी हम उसको बोलते हैं। साइलेंट किलर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर भी इसके कोई स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, और कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना हाई है, और हम इसको कुछ और ही समझने लग जाते हैं, हमारा ध्यान इस ओर जाता नहीं है। तो बिना लक्षणों के अगर हमारा जो रक्तचाप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमें कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। कई बार दर्द या परेशानी जो है वो महसूस नहीं होती, जिससे लोग पूरी तरह से सामान्य महसूस करते हैं। उस स्थिति में भी जो हाई बीपी है वो उनको परेशान कर सकता है, और जो भीतरी अंग जो हमारे होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि जब हमारा बीपी हाई रहता है तो हमारी धमनियां, दिल, दिमाग और किडनी को गंभीर नुकसान जो है वो पहुँचता है, और उस नुकसान का हमें पता भी नहीं लगता है। खराब जीवन शैली जो है हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण है। अधिक नमक का सेवन, तनाव अधिक करना, शारीरिक श्रम की कमी और जंक फूड जो है, ये जो सामान्यतः ये चीज़ें जो हैं ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। जी हाँ, शारीरिक श्रम जो हम पहले बहुत ज़्यादा करते थे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता था हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम जी भर काम करते थे, जी भर जो है खाते थे, और जो खाते थे वो हमारा अच्छे से हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखता था, क्योंकि काम के द्वारा उसका पाचन भी हो जाता था। कई बार जो है हम कुछ ऐसा नहीं खाते हैं, फिर भी अनुवांशिकी, जिसको हम हेरिडिटरी भी बोलते हैं, या फिर उम्र का जो कारण होता है उससे भी जो है हमारा बीपी है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मोटापा और मधुमेह, ये दोनों भी मुख्य कारण होते हैं। इसमें से जो मोटापा है वो तो हमें आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बीपी को बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि जब शरीर आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो धमनियाँ हैं वो उनको जो है ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। तो नियमित जांच हमें समय समय पर ब्लड प्रेशर की करा लेनी चाहिए, या हमें बीपी नापने का जो यंत्र है वो हमें घर में रख लेना चाहिए। आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चले हुए हैं जो सेल से चलते हैं, तो हर कोई अपना जो बीपी है उसको नाप सकता है। तो आवश्यकता पड़ने पर हमें ऐसे जो है हमारा जो बीपी है उसको जाँचना चाहिए, जब हम थोड़ा बहुत भी किसी भी बात में असामान्य महसूस कर रहे हों। इसके अलावा हमें स्वस्थ आहार पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे जीवन को सक्रिय रखना चाहिए। रोजाना 30 मिनट का जो व्यायाम है वो हमें जरूर करना चाहिए, और अगर हम व्यायाम भी नहीं कर पाएं तो कम से कम 1 घंटे की वॉक हमारी दिन में हो जानी चाहिए, ये हमें निश्चित जरूर करना चाहिए, क्योंकि पैदल चलना जो है वो हमारे बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही जो है अच्छा है। और अगर हम जो है पैदल चलते हैं तो हमारा जो शरीर है वो कंट्रोल में रहता है, और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे हम बचे रहते हैं। तो आइए अब फिर से कराते हैं आपका मनोरंजन, और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियो अब हम चर्चा करेंगे मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी। स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए अगर हम रोजाना 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक सुबह अगर हम सैर करके आ जाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहती है। अगर हम बात करें हार्ट हेल्थ की तो नियमित रूप से चलने से हमारा जो हृदय है वो मजबूत होता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होता है। और अगर हम बात करें वज़न की तो इससे वज़न नियंत्रित रहता है। सुबह सुबह खाली पेट जब हम जो है चलते हैं तो हमारी जो कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा तेज होता है और उसके बाद हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो वो बहुत अच्छे से हजम होता है। और इसके साथ साथ जो पैदल चलना है वो तनाव से मुक्ति सखियों बहुत अच्छे से देता है। जब हम पैदल चलते हैं यूं तो अगर हम इवनिंग वॉक भी करें तो भी हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, परंतु अगर हम सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक अगर हम करके आ जाते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं क्योंकि ताज़ी हवा और जो सुबह की जो धूप होती है उससे हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और हैप्पी हार्मोन जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं वो रिलीज होता है। और शुगर जिनके हैं उनके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल को जो है संतुलित रखता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो सुबह सुबह बहुत सारे ज़रूरी काम हैं वो सुबह सुबह करते हैं और काम करते करते ही उनकी वो वॉक हो जाती है और वो स्वस्थ रहते हैं। अगर हम अवधि की बात करें तो 10 से 15 मिनट भी अगर हम चल पाएँ तो भी बहुत है, ना करने से तो अच्छा है, लेकिन अगर हम

लें तो ये हमें बहुत अच्छे से स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रहने के लिए एक वयस्क को रोजाना कम से कम 30 मिनट या लगभग 7,000 से 10,000 कदम पैदल चलना चाहिए, और रोजाना कुल 30 से 45 मिनट तक अगर हम चलते हैं तो इतने कदम हमारे आराम से हो जाते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए 7,000 से 10,000 कदम जो है वो बेहतरीन है हमारे लिए, अगर हम इतना कर पाते हैं तो। सखियों, हमें चाहिए कि हम 30 से 45 मिनट तक हम जो है रोजाना सुबह सुबह की सैर करके आएं और तेज तेज कदमों से चलें, और खाना खाने के तुरंत बाद हम तेज वॉक ना करें और खाली पेट ही हम जो है सैर करने जाएं। कम से कम 45 मिनट का अंतर हम रखें, खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं ज़्यादा एकदम से चलना चाहिए। यदि जोड़ों का दर्द है या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही जो है ये वॉक करनी चाहिए। आइए आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सखियों, घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग

0: योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमे चरण से FM बैंड 103.7 MHz की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कोयला के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए उदित नारायण और उनके साथियों ने।

दोस्तों, ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिमे चैनल से, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म चलते चलते से। इस गीत को आवाज़ दी है अभिजीत और उनका साथ दे रही है अलका याग्निक का।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंपा मेथी और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

खोन मोती जड़ी लगा केसरियो बाबो तुरे बिना तो तुरे तार हजार

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चंपा मेहती और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 से आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान कल, 162 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा, चिप से लेकर शिप निर्माण तक आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना का ड्रोन थॉन 2026 14 सितम्बर से होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 162 निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। 4 नगर परिषदों की 6 वार्ड और 1 नगर निगम के 1 वार्ड में सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगमों में मतदान होगा। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नागौर सहित अन्य नगर परिषदों में भी मतदान होगा। जयपुर जिले में पहले चरण के तहत 18 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कुल 565 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 20,600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जो 5,393 वार्डों में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं करीब 57,50,000 मतदाता पंजीकृत हैं। इस चरण के तहत कुल 7,600 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बीच मतदान दल पोलिंग बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। मतदान के लिए संबंधित क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। कल होने वाले मतदान को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 11 सितम्बर को होगा। इसके लिए रोड शो का सिलसिला जारी है। साथ ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। इस बीच स्वीप गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा लोगों से लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने का आग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड की जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
1: कल 9 तारीख को 5 नगरीय निकायों में कल चुनाव है। कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बानसूर और नारायणपुर, इन 5 अर्बन बॉडीज के मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि कल के दिन सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू हो जाएगा, तो आप सब 100% अपना मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए जरूर अपने पोलिंग बूथ पे उपस्थित रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में इस दशक में तेजी से हुए काम ने इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज वडोदरा से विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंड देश को समर्पित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने

0: कहा कि वर्तमान समय में फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार का मुख्य आधार बन रहे हैं।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ही संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये सातवां संस्करण है। ये नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ ही निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के लिए साझा मंच है। जीएफएफ में एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 3 राज्यों में आईटीआई क्लस्टरों के लिए रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनकी लागत 735 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार इन स्वीकृतियों के साथ ही पीएम सेतु के तहत अब 9 आईटीआई क्लस्टरों में कुल स्वीकृत निवेश 2171 करोड़ रुपए हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज जयपुर में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक ली। उन्होंने जल नल मित्रों के प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरी हो चुकी ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं को स्थानीय समुदायों को सौंपने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विधिवत हस्तांतरण से स्थानीय लोगों में योजनाओं के प्रति स्वामित्व और सहभागिता की भावना मजबूत होगी। भीलवाड़ा जिले में जर्जर विद्यालय भवनों और क्लासरूम के नए निर्माण कार्यों के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से ये मंजूरी दी गई है। इसके तहत जिले में 116 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त किए जाने के बाद नए सिरे से बनाया जाएगा। इसी तरह राजसमंद जिले में भी DMFT मद से 11 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। वहीं 83 सरकारी स्कूलों में क्लासरूम और नए शौचालयों का निर्माण होगा। रून थॉन 2026 का आयोजन 14 सितंबर से जैसलमेर के पोखरण रेंज में किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित किया जाने वाला प्रमुख रक्षा और तकनीकी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 3 दिन के इस कार्यक्रम में ड्रोन से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लाइव और स्टैटिक प्रदर्शन किए जाएंगे। आमिर महल इलाके में कल हुई चाकूबाजी की घटना में घायल टूरिस्ट गाइड की आज SMS अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आमिर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि इसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय नागरिकों ने बाजार तथा दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। थानाधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार पर्यटकों को लेकर एक जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद चालक ने गाइड पर हमला कर दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर साल 8 सितंबर का ये दिन लोगों को विकास का आधार शिक्षा को मानने की प्रेरणा देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दुनिया में वयस्क साक्षरता दर 88% तक पहुंच चुकी है, किंतु फिर भी करीब 7.5 करोड़ लोगों का निरक्षर रहना ये बताता है कि साक्षरता की यात्रा अभी भी अधूरी है। भारत में 7 साल और उससे अधिक आयु की साक्षरता दर करीब 81% होना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि राज्य और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर अभी भी बना हुआ है। आज साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं तथा सोशल मीडिया के दौर में सूचना साक्षरता का महत्व तेजी से बढ़ा है। एआई के विस्तार में इसने नया आयाम जोड़ दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोगियों की शारीरिक क्षमता और गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। जयपुर के फिजियोथेरेपिस्ट नोमान ने बताया कि ये दर्द को कम करने के साथ ही कार्यक्षमता को बहाल करने में भी महत्वपूर्ण है।
3: फिजियोथेरेपी केवल चोट और सर्जरी से उभारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुराने दर्द को कम करने और शारीरिक क्षमता में सुधार लाने में भी मदद करती है। साथ ही ये दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और स्ट्रोक के बाद की रिकवरी में भी अहम भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी खाली चोट लगने और हड्डी टूटने के बाद ही नहीं करवाई जाती, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की समस्या, कमर और गर्दन के दर्द में भी काफी राहत देती है।
0: बाड़मेर में कल रेलवे शहीद मेला आयोजित किया जाएगा। गडरा रोड स्थित शहीद स्मारक पर यह मेला भरेगा। इसमें शहीदों के परिजन और रेलवे अधिकारी तथा कर्मचारी जुटेंगे। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गडरा रोड और गागरिया रेलवे स्टेशनों के बीच 17 रेलकर्मी शहीद हुए थे। उनकी याद में हर साल रेलवे शहीद मेला लगाया जाता है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स के नए पर्यटन सीजन का पहला फेरा कल से शुरू होने जा रहा है। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शाही रेलगाड़ी रवाना होगी। पहले टूर में 77 मेहमान सफर करेंगे। उन्होंने बताया कि नए सीजन में ट्रेन के शुरुआती 4 टूर फुल हो चुके हैं। ट्रेन के दोनों रेस्टोरों को भी नए रूप में तैयार किया गया है। नए बदलावों के साथ ये रेलगाड़ी राजस्थान की शाही विरासत को पेश करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान कल। 162 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा। चिप से लेकर शिप निर्माण तक आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना का ड्रोन थॉन 2026 14 सितंबर से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी हुई हैं। दो चरणों में होने जा रहे मतदान के पहले चरण में कल नोखा, देशनोक और श्री डूंगरगढ़, खाजूवाला, लूणकरणसर तथा नापासर नगर पालिकाओं में वोट डाले जाएंगे। वहीं बीकानेर नगर निगम में 11 सितंबर को मतदान होगा। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवानगी की गई। नापासर के वार्ड 20 और 24 तथा बीकानेर नगर निगम के वार्ड 69 में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान के लिए 689 बैलेट यूनिट और 682 कंट्रोल यूनिट आवंटित की गई हैं। वहीं 137 बैलेट यूनिट और 144 कंट्रोल यूनिट आरक्षित रखी गई हैं। जिले में शत प्रतिशत मतदान को लेकर चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत पिछले दिनों कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। जागरूकता रैली, निबंध, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताओं के साथ नवाचारों के जरिए लोगों को मतदान का संदेश दिया गया। देवी कुंड सागर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जहां स्काउट गाइड को मतदान का कर्तव्य

0: याद दिलाया गया। इसी कड़ी में कई शिक्षण संस्थाओं और संगठनों में भी संवाद कार्यक्रम रखा गया। कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में युवा मतदाता संवाद आयोजित हुआ। इसी तरह सार्वजनिक पुस्तकालय और डूंगर कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय की भी लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता के लिए उनके साथ भी संवाद किया गया। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सिटी गैस समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने गैस नेट प्रतिनिधि को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गैस वितरण व्यवस्था में सुधार और अवैध खनन पर कार्रवाई के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी तरह खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने खनन क्षेत्रों में पौधरोपण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर नाराजगी जताते हुए गजनेर अभयारण्य की सीमा निर्धारण नहीं होने से आ रही कठिनाइयों पर अधिकारियों से चर्चा की। जिले में मॉनसून के आगमन के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने को लेकर जिलेवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत माँ यशोदा के नाम से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव हेमंत गेरा और जिला कलेक्टर निशांत जैन तथा मुख्य वन संरक्षक आरके खेरवा ने भी पौधे लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर बताया कि कतरिया सर में 110 बीघा क्षेत्र में 5 हरित चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत मरुधरा संजीवनी पार्क, थार हरित क्षेत्र, मरु चिंकारा चारागाह, प्रकृति संवर्धन चारागाह और जैव विविधता धाम के काम शामिल हैं। 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव बीचवाल मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने नाटक और लोक नृत्य से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आजादी की वर्षगांठ जिले भर में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस बार बीकानेर जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और यूपीआई पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के लगभग 1200 बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जिले भर में इस बार मॉनसून की बारिश में उतार चढ़ाव बना रहा। वर्षा की गतिविधियों में कमी के चलते जलाशय अभी तक नहीं भर पाए हैं। वहीं खेतों में खरीफ की फसल पर भी असर पड़ा है। किसान अब भी मॉनसून में अच्छे बारिश की आस लगाए बैठे हैं। बीकानेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। नगरीय निकाय चुनाव रा पहला दौर माय काल 162 निकाय माय सवारे 7 बजाऊं वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र रा तौर उ सामी आयो। चिपू शिप बनावन ताई खुद रे पान उबोहे वन री नुवी गाथा लिख रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुकम दीना। और जैसलमेर री पोखरण रेंज माए 14 सितंबर उ भारतीय वायुसेना री ओर ड्रोन थॉन 2026 रखियो जावेला। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माए नगरीय चुनाव रा पहला दौर राते अतकाल समारे सातों सिंचा 6 बजा ताई वोट पड़ेला। निकाय चुनाव रा ई पहला दौर माए 162 निकाया माए वोट डाल्या जावेला। ई बीच 4 नगर परिषदां रा 6 वार्ड और 1 नगर निगम रा 1 वार्ड माए सदस्य सगला री 1 राय चुनी चिया है। काल अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगम सागे, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नागौर समेत न्यारी न्यारी नगर परिषदा माए चुनाव सारू वोट पड़ेला। चुनाव रा पहला दौर माए जयपुर जिला रा 18 नगरीय निकाया माए वोट पड़ेला। इन सारू 565 मतदान केंद्र बनाई चिया है। पहला

0: चरण रा चुनाव माए 5,393 वार्डा माए 20,692 उम्मीदवार भाग आजमा रहा है। आ वार्डा माए करीब 57,50,000 मतदाता वोट दे सकेला, जहां सारू 7,692 मतदान केंद्र बनाई चिया है। इबीचे पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पूगर जरूरी व्यवस्थावां कर रही है। काल पड़वा वाला वोटां सारू उम्मीदवार मारा हिमायतियां सागे पूरा उमाऊं घर घर जार माने वोट देवन रियरज कर रिया है। काल चुनाव वाला हलका माए वोट देवन सारू बिना तनख्वाह कटियां छुट्टी रो ऐलान करी चियो है। प्रदेश माए स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा तेत 11 सितंबर न वोट पड़ेला। इन सारू रोड शो रो सिलसिलो चाल रियो है। प्रचार काल सिंजा ताई चालेला। वोटां री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। इबीचे स्वीप कार्यक्रमां रे जरिए वोट जरूर देवन री अरज करी जा रही है। कोटपुतली बहरोड री जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता जनताओं स्थानीय निकाय चुनाव माए वोट जरूर देवन री अरज कीनी है।
1: कल 9 तारीख को 5 नगरीय निकायों में कल चुनाव है। कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बांसूर और नारायणपुर, इन पांचों अर्बन बॉडीज के मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि कल के दिन सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू हो जाएगा, तो आप सब 100% अपना मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए जरूर अपने पोलिंग बूथ पे उपस्थित रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रा परिवहन और लॉजिस्टिक्स हलका माए लारला 10 साल माए तेजी उभिया काम ई हलका रो काया पलट फेंक्यो है। वे आज गुजरात रा वडोदरा माए राखी जा कार्यक्रम रे दौरान खास माल ढुलाई गलियारा रा 3 विशेष खंड देश ने सौंपिया। ई मौके श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर माए फ्रेट कॉरिडोर देश माए कारोबार रे खास बुनियाद बन रहा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री कहो कि भारत विश्व स्तर रा विनिर्माण केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। वे कहो कि देश में आई पूरी खुदरेपान उबी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करी जा रही है।
2: अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री रो आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 रो उद्घाटन करण सागे जनसभा न संबोधित करण रो कार्यक्रम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट रो ओ 7वां संस्करण है। GFF माय AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन PM सेतु री 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति री मीटिंग माय राजस्थान समेत 3 राज्यां माय ITI क्लस्टरां सारू रणनीतिक निवेश जुड़ी योजनावां ने मंजूरी दी रीची है। आमाथे 735 करोड़ रुपयों भत्तो खर्च आवेला। राजस्थान जुड़ी योजनावां सारू 241 करोड़ रुपया राखी चिया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रे मुजब ई मंजूरी सा गई PM सेतु रा तेत अब 9 ITI क्लस्टरां सारू मंजूर करी जिया कुल निवेश री रकम 2,171 करोड़ रुपया फेंकी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए राज्य जल और स्वच्छता मिशन री अपेक्स कमेटी री मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव जल नल मित्रा री सिखावण टेम सर पूरी करण रा हुकम दीना। वे गांवाई हलका माए नल रे जरिए पानी पुगावण री पूरी भे चुकी परियोजनावां ने वठेरा लोगां ने सौंपण बाबती कहो। भीलवाड़ा जिला माए खस्ता हाल स्कूल भवना और क्लासां ने नुआ बनावण सारू 126 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट री ओर मंजूर करी ची ई रकम

0: देशमाय विकसित करीजी ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियां रा असर री जांच करनू है। रक्षा मंत्रालय रे मुजब तीन दिन रा ई कार्यक्रम माय ड्रोन नु जुड़िया कई हलका ना बारा माय लाइव और स्टेटिक प्रदर्शन करिया जावेला। जयपुर रा आमेर महल हलका माय काल हुई चाकूबाजी री वारदात माय जख्मी व्या टूरिस्ट गाइड री आज सवाई मानसिंह अस्पताल माय इलाज रे दौरान मौत फेंकी। हाल ताई मिली जानकारी रे मुजब सैलानिया ने लेर जा रहा जीप ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड बीच भया झगड़ा रे दौरान जीप चलावन वालों गाइड माथे हमलो कर दी नो हो। आमेर रा थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा बतायो कि आरोपित ने पकड़ और मामला री जांच करी जा रही है। एहतियात रा तौर हल्का माय पुलिस रो और जाब्तो लगाई चियो है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर साल 8 सितंबर ने ओ दिन लोगा ने विकास री बुनियाद भणाई लिखाई ने मानबारी सीख देवे है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दुनिया में वयस्क लोगा रे साक्षर वेवन री रेट 88% ताई पूग गई है, पर फिर ही करीब 7.5 करोड़ लोगा रे अक्षर ज्ञान बिना रेवन ओ बतावे कि अक्षर ज्ञान रो सफर हाल ई अधूरो है। भारत माए 7 साल और इणु 32 उम्र रा लोगा री अक्षर ज्ञान री रेट करीब 81% वेवनो मोटी उपलब्धि है। आज साक्षरता केवल आखर ज्ञान ताई सिमट्योड़ी कोनी है, बल्कि बैंकिंग, डिजिटल चुकारा ऑनलाइन सेवावा और सोशल मीडिया रा दौर माए सूचना साक्षरता रो महत्व तेजी उ बढ़ियो है। एआई आ जावणु ई माए नुवो आयाम जुड़ गयो है। समाचार कक्षु सालेहा गाजी।
0: आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य हलकाऊ जुड़ियो खास हिस्सो है जो मरीजा रा शरीर रा बूता और हलचल बनाया राखण माए मदद करे है। जयपुर माए कसरत करावन वाला फिजियोथेरेपिस्ट नोमान बतायो कि फिजियोथेरेपी दर्द कम करण सागे काम करण रोबूतो उजु हासिल करण माई खास है।
2: फिजियोथेरेपी केवल चोट और सर्जरी से उबारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुराने दर्द को कम करने और शारीरिक क्षमता में सुधार लाने में भी मदद करती है। साथ ही ये दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और स्ट्रोक के बाद की रिकवरी में भी अहम भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी खाली चोट लगने और हड्डी टूटने के बाद ही नहीं करवाई जाती, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की समस्या, कमर और गर्दन के दर्द में भी काफी राहत देती है।
0: बाड़मेर जिला में गडरा रोड रा शहीद स्मारक माथे काल रेलवे शहीद मेलो भरेला। ई मौके रेलवे रा शहीद व्या बहादुर कर्मचारियों रा बलिदान न याद करियो जावेला। ध्यान जोग है कि साल 1965 में पाकिस्तान रे खिलाफ लड़ाई रे दौरान गडरा रोड और गागरिया रेलवे स्टेशन बीच शहीद व्या 17 रेल कर्मचारियों री याद में हर साल 9 सितंबर ने रेलवे शहीद मेलो भरे है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स नुआ पर्यटन सीजन में पहली दफा काल नई दिल्ली रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन रवाना फैला। पर्यटन विभाग रे प्रमुख सचिव शुचि त्यागी बतायो कि पहला फेरा माए 77 मेहमान सफर करेला। वे बतायो कि नुआ सीजन माए रेल रा शुरुआती 4 टूर माए सगली सीटां भर की है। रेल रा दुनिया रेस्तरा नई नुओ रूप दियो चियो है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह अब सिर्फ दिल्ली माए करावन री बजाय देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए करायो जावेला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रे मुजब नई व्यवस्था री शुरुआत 72वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह रे 22 सितंबर ने गुजरात रा एकता नगर माए राखर करी जा रही है। आर्टिकल 370 ने सब बेहतर फीचर फिल्म रा इनाम नवाजी जावेला। भंगार बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुनी ची है। कार्तिक आर्यन ने बेहतरीन एक्टर और यामी गौतम ने बेहतरीन अभिनेत्री रो इनाम देर नवाजा जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ए इनाम देवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। नगरीय निकाय चुनाव रा पहला दौर माए काल 162 निकाय

0: मां सवारा सात बजाऊं वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र रा तौर सामी आयो चिपू शिप बनावन ताई खुद रेपान उबोवे वन दी नुवी गाथा लिख रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुक्म दीना। अर जैसलमेर री पोखरण रेंज माए 14 सितंबर भारतीय वायुसेना री ओर ड्रोनेथोन 2026 रखियो चावेला। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। किसानवाणी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से होगा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में ना आया, बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाला सगला श्रोतावा ने, काश्तकार भाई बहना ने, चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली बुआ, सब ने ढो करे जैसा। नरपत भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम।
6: और आज तो नरपत भाई मैं बछवारस ची गाय पूजवा गया, गाय बछड़ा की पूजा हो गई है। एक अजीब सी बात मैं देखी, मन तो यहाँ लागे कि पूजवा ही क्यों आया आपा,
7: क्यों
6: जो गाय छी और बिल्कुल नानो सो बाछड़ो छो, अब लुगाया सुवारे 4 बजा सो, जो ग्वालन छी बा बता रही कि 4 बजा सो लुगाया पूजवा आ रही है, और 4 बजा सो गाय पर भी बाछा पर दूध और दही पानी मेहंदी जाने काई काई पटक रहे, बाछड़ो या कांप रहे हो। तो मैं गई तो मैं बोली यहाँ सबने खैरी खैबा ने तो नाट रही कि भाई बहुत छीटाई मार दो, बहुत पानी या दही मत पटको, इन्हें ठंड लाग रही है, पर लुगाया तो लुगाया है, माने को नहीं। मने लागो अच्छी पूजा काई काम की जो प्राणी ने दुख देवे, इसु तो आपा घरा ही कहानी सुन लेता और थोड़ा सो चारों बाने गाल देता तो ही चोको चो।
7: बिल्कुल सही बताया कि आपने वाकी पूजा करा तो आप घर भी पूजा कर सका था, क्योंकि आपने जो मान्यता रही की देवी देवता की, अगर भगवान कृष्ण ने भी एक गाय बछड़ा भोजा था अत्यधिक प्रेम था, इसलिए आप बारह आप मनावे था, जिसके कारण आपने ये जरूरी थोड़ी कि आपने जानवर ने परेशान करा, एक नाम से ही श्रद्धा में अपने दिल में होना चाहिए कि आज आप बच बारस की पूजा करे जा, तो एक मन में ही सोचो जाए कि आप एक अपना बछड़ा की आप पूजा कर लिया थी, होना चाहिए थे बताई जी साहब।
6: बिल्कुल, और इको एक दूसरो नाम बच बारस तो आप अपनी भाषा में देसी में बोला, इन्हें वत्स बारस भी कहते, वत्स यानी टाबर, और इमें ना जो फुदोकड़ो खिलावे छे यानी दही जो है गूठी सुखूल खिलावे है चांदी की, और टाबर ने गोदी में बिठार खिलावे है, तो टाबर पणा में तो चोखो लागे ही लागे, मारे तो जो मार माता जी है अबार भी माने भाई बहना ने बैठार खुआवे है, और बड़ो चोखो लागे वो जो स्नेह है ना चोखो लागे। और इको एक महत्व जो मैंने समझ में आवे नरपत भाई कि हमेशा सुई कोई भी रीति रिवाज अपना रहा है पुराना पुरखा जो चलाता है मी के पीछे एक कारण रहो है और बड़ो उद्देश्य। आप देखा कि गाय की बाछिया वह है तो बाने तो भाई आगे जार गाय बना ली खूब सार संभाल करे है, पर जो बछड़ो हो वह भी की पत्ती सार संभाल को नहीं करे, लोग यहाँ सोचे एक टेम के बाद कि वो तो कोरो चारो खा रहे हो इको कहीं काम है, और आज का दौर में तो जटे जो खेती है वह भी मशीना सु होबा लागी तो और बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में गाय के सागे बछड़ा की पूजा करवा को महत्व यो ही है कि जत्ती बछिया महत्वपूर्ण है बत्तो ही बछड़ो भी महत्वपूर्ण है।
7: बिल्कुल सही बताया, क्योंकि बार ई टाइम में जो आपने गाय छे बाने, अगर आप बहुत सारा लोग हैं दूध की टाइम में तो वन बांध ले और ई टाइम में वन छोड़ दे तो वह रोड़ा पर सड़का पर और गलिया में घूमती रहे तो आपको केवल मतलब छे, और या बा बछड़ी छे तो बिन तो ये लग ले भाई आगे या बड्डी हो ले अपन दूध दूध दे रही, लेकिन बछड़न तो मैं आप बता रही जो सही छे कि इन्हें फ्री में ये छोड़ दे कि मतलब जो आप बार तो आप पूजा करे था पूजा के टाइम तो आप भी ढूंढ रहे था, लेकिन जब आपने की जरूरत कौन है तो आप अभी नहीं छोड़ दे।
6: तो आपनों जो काश्तकार है जिन्हें पतो है अपना ढांडा ढोर को महत्व, वो तो इन्हें समझे ही है, पर आम नागरिक भी समझे कि जो जीव है वे कोई सो भी पशु हो भी ने भी उदारता की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, सार संभाल की जरूरत है, जैया कार्यक्रम में आपने बाता चीता और जानकारियां की जरूरत रह हैं।
7: बिल्कुल,
6: तो अब जानकारी की तरफ चला आपा है ना, और पहले एक संदेश सुन लिया।
7: बिल्कुल सुनाओ सर।
8: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
9: पुतला बोल रहे,
8: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
9: मतलब
8: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
9: पर हम तो सब यही डाले हैं।
8: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
9: सच है?
8: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
9: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
10: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
11: श्रोतमा, आज आपने साथ स्टूडियो में से हैं डॉक्टर राजेश विश्नोई, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा, और आज आप यहाँ से बात करला उन्नत भेड़ पालन में मूल्य श्रृंखला की भूमिका के बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सा।
12: सगला किसान भाइया ने और पशुपालक बहना ने मेरी तरफ हूँ, सब ने राम राम सा।
11: जी हाँ, की आज आपने बात को विशेष है डॉक्टर साहब, उन्नत भेड़ पालन में मूल्य श्रृंखला की भूमिका। सबसे पहले आपसे यही जानबो चावल हाँ कि यह जो मूल्य श्रृंखला होवे छे या काई होवे छे, इको मतलब काई होवे छे, बताओ सर।
12: देखो मैडम, मूल्य श्रृंखला जकी है, मैं यदि थाने सरल शब्द में जो किसाना की भाषा में यदि बतानो चाहूं तो मतलब भेड़ के बच्चों यानी जन्म लेर बिंगा उत्पाद जिया ऊन दूध मांस ये जगह आप अंतिम जगह उपभोक्ता है बी तक जगह पहुंचने की जगह पूरी यात्रा है
11: जी।
12: इन आपा जो है मूल्य श्रृंखला का वहाँ, और इन यात्रा में क्या है कि हर कदम पर उत्पाद की कीमत और बिंगी गुणवत्ता भी जकी है बा बढ़िया हुआ है, तो इन्हें जगह है मूल्य श्रृंखला प्रबंधन। और कह यदि मैं थाने एक उदाहरण देर बताऊ तो एक यदि भेड़ पालक कोई भेड़ ऊन कतर बिन हितो स्थानीय व्यापारी को बेच दे तो वो मूल्य श्रृंखला कौन जुड़ो? क्यों? क्योंकि बन सीधो ही जो को है बिना ऊन की ग्रेडिंग करिए, बिना बिंगी साफ सफाई करिए, बिना बिंगे प्रोसेसिंग करिए, बिना बिना जो को है सीधो भेज दियो। लेकिन यदि वो भी ऊन की कटाई करे, बिंगी छंटाई करे, बिना साफ करे, और जो की धागा या कंबल बनाने वाली कंपनियां है वहां तक यदि वो बाने पहुंचावे तो बिंगो हर स्तर तक बिंगो मुनाफो बढ़ी। तो इन्हें यहाँ पर कहवा वैल्यू चैन और वैल्यू चैन श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला।
11: कहवा को मतलब ये भाई हर चीज की शुरुआत से लेर जब तक सामान बन तैयार हो उनकी कड़ी सु कड़ी जुड़ेड़ी होनी चाहिए।
12: जी, बिल्कुल बिल्कुल
11: वासा। तो या तो यो मूल्य श्रृंखला को मतलब अब आप सुई का महत्व का बारे में जानबो चावला, भाई आपना जो भेड़ पालक छे वे ई मूल्य श्रृंखला ने की कर उपयोग कर आपको जो प्रोडक्ट छे उनको और भी ज्यादा जो मूल्य छे उन्हें बढ़ा सके।
12: देखो मूल्य श्रृंखला जो की है वह भेड़ पालन बहुत महत्वपूर्ण, और मैं तो कहूँ चाहे किसो भी आपा धंधो करा, किसो भी व्यवसाय करा, मूल्य श्रृंखला को जानना अपने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका कई लाभ है। पहला तो लाभ वो है कि जो किसान और पशुपालक भाई बहन है वे आपकी उत्पादन लागत ने जो की है वे नियंत्रित कर सके। दूसरो लाभ है कि जगह उत्पाद आवे बांग यहाँ पर गुणवत्ता बढ़ा सका। तीसरो है कि यहाँ पे जगह बिचौलिया जगह रहे वहां पर आप निर्भरता कम करी जा सके मूल्य श्रृंखला की जानकारियों। और चौथो है किसाना की यदि जो बाजार की मांग और कीमता की जानकारी मूल्य श्रृंखला के माध्यम ही किसाना ने मिल सके। और कच्चा जगह उत्पाद है बाने मूल्य संवर्धित कर और या बांगी प्रोसेसिंग कर बाऊ जो है किसान भाई और पशुपालक अलग अपनी आय जो की है और बढ़ा सके। और इन में यदि भेड़ पालन की मैं बात करूं तो इन मूल्य श्रृंखला में कई चरण है, जहाँ भेड़ की पहला अच्छी नस्ल को आप चयन करा
11: जी।
12: बिंग बाद बिंगो प्रजनन किया हो रहा है, बिंगो पोषण किया है, बिंगो स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी अपन रखनी है, मेमना का जगह पालन है, ऊन मांस और भी जगह जिया भेड़ ने पांच सितारा पशु गए जगह बिंगा पांचों उत्पाद है बे, प्लस आप पशुआ की बिक्री किन्ने कर रही है, ऊन की आप प्रोसेसिंग, मांस की प्रोसेसिंग, और इनमें ट्रांसपोर्ट विपणन, और अंत में जो उपभोक्ता उत्पाद तक पहुंचे सब जत्ता इंगे माई जगह जगह रोल और जगह अदा करे बांगी जानकारी है। यानी मतलब मेरे कहने का मतलब है उत्पादन करनो ही कोई नजर काम को नहीं, लेकिन बिना सही तरीके हूँ बाजार तक पहुंचाना और सही भाव में सही कस्टमर ने गुणवत्ता के साथ देना वो मूल्य श्रृंखला को मेन महत्व है।
11: डॉक्टर साहब आप अबार बात कर रहे थे अपना जो ऊन की और मांस की भेड़ा के मायने, तो अपना जो पशुपालक भाई है जो कि भेड़ ने पाले छे वे भी ऊन और जो मांस है उनकी जो गुणवत्ता है उन्हें की तरीका से ज्यादा और बेहतर बढ़ावे ताकि बाजार में जब ये दोनों ही चीजें वे ले जावे तो वाना उनकी जो मूल्य है वो चोखू मिले और आमदनी अच्छी होवे, पशुपालक की आमदनी अच्छी है तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही मजबूत है।
12: बिल्कुल सही बात की थे, क्योंकि आपा के प्रधानमंत्री जी वे विकसित भारत 2047 की आपा बात आपा के सामने एक लक्ष्य रखियो है
11: जी।
12: और विकसित भारत जब तक आपा छोटा और लघु और सीमांत किसान ने साथ में ले नहीं चाला जेना भी मैं बिना अचीव करना आपा खातर मुश्किल हो सके, तो भी मैं जगह मेन जगह आपा का लघु और सीमांत किसान है वे उनको मेजर धंधो ही जगह और मेजरली यदि बात करूं शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया की तो भेड़ पालन ही बांगो आजीविका को मुख्य साधन है।
11: सही बात।
12: और भेड़ पालक को यदि उत्पाद की बात करा तो ऊन और मांस ये दोनों मुख्य उत्पाद है। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो भेड़ पालन में जो को है ऊन बेहतर लाभ प्राप्त करने खातर ऊन की मात्रा नहीं लेकिन इनकी गुणवत्ता भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और समय पर और इनकी वैज्ञानिक तरीके ऊन की कटाई करो। आप पका नहीं यहाँ कैंचियों किसान लोग काटे जबकि शीरिंग वे मशीना आउड़ी है ऊन की कटाई की, वे मशीना को प्रभाव लो जगह ऊन को रेसो जो को है वो कैंचियों काटियो छोटो रह जाए और इनकी गुणवत्ता गिर जाए तो आधुनिक जगह कटाई की कतरन मशीन आउड़ी है बांगो किसानों ने ज्यादा में ज्यादा उपयोग करना क्योंकि भी उनके कि बांगो श्रम भी कम लगे और उनकी लंबाई भी अच्छी मिले। बिंगे बाद सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करो थे ऊन उतार दी बाद सफेद ऊन कोई पूरी ऊन गंदी ऊन माने अलग अलग कर लो सबने और अलग अलग ग्रेड के ऊन की कीमत बाजार में और बेहतर बाद में अलग अलग मिले। बिंग बाद सफाई करो ऊन ने धो सुखायो सही तरीके गांठा बनाए पैक करो और कई किसानों मारी जद बात हुआ है ये के सब मैं अकेलो किया कर सकूं तो इनमें मैं आ कहना चाहूं कि भाई अकेलो जो को है वो भी खातर बहुत मुश्किल है। इन वास्ते आपा की भारत सरकार है बन भी सामूहिक के नाम पर एफपीओ चालू करिया 10,000 एफपीओ का आपा के बनवाया तो एफपीओ या स्वयं सहायता समूह या कोई और अलग उत्पादक संगठन बनाओ भेड़ पालक जता करे वे एक साथ इकट्ठा हो और आपकी जगह सामूहिक क्षमता है बीहू थे जगह है सीधो थारो उत्पाद है वो किसान कपड़ा मिलाऊं जुड़ो ताकि बिचौलिया अन्य आप ज्यादा में ज्यादा कम कर सका और जो को लाभ है वो सीधो भेड़ पालक करने जा सके। आई बात यदि मैं बात करना चाहूं तो आई सेम जो है मांस में क्योंकि मांस में भी जो है अभी आपा के देखा मांस में स्लॉटर हाउस है तो बे जगह है बे एकदम आधुनिक और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का अच्छो पैसों चाहिए तो वो पैसों यदि बे संगठक बना ले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना ले तो भारत सरकार की बहुत सारी योजना है जगह में भी ने माने अनुदान मिल सके प्लस जो को मांस है वो जल्दी खराब होने वालों भी है तो ई खातर रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां होगी या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी ये सब जो किसान भाई और पशुपालक भाई बहन है वे संगठित हुई कर सके प्लस जो आपा मेमनार जगह बेचे बाजार में वे आपा आज के टाइम में सीधे यहाँ बन जीती रोड रेट

0: बोल दी किसान भाई ऊपर नीचे कर मान जिए, कोई एग्जैक्ट तोलने गिर कोई व्यवस्था का नहीं। तो बा व्यवस्था बेजगह है, एकदम सामूहिक संगठन बना कर सके ताकि यूं बांगू ही लाभ ज्यादा बढ़ी, बांगी ही जेब में ज्यादा में ज्यादा आमदनी जा सके।
1: श्रोतमा डॉक्टर राजेश विश्नोई, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा अपनी साथ छे और आपने बता रहा छे कि उन्नत भेड़ पालन में जो मूल्य श्रृंखला छे उनकी काई भूमिका छे और कितो महत्व छे। बात आप यहाँ से बहुत सारी कर रहे छे, बहुत ही विस्तार से समझा रही है अपना जो भेड़ पालक भाई बहन जवाने समझा रहे छे। अब आपसे डॉक्टर साहब यह जानबो चावला कि घूम फिर बात आ जाओ छे भाई, कोई भी काम ना आप शुरू करा तो एक तो आधुनिकता और टेक्नोलॉजी दोनों को ज्ञान होना जरूरी छे आज का टाइम में अगर चोखो उत्पादन लेनो छे। तो जब आप बाजार की बात करा भेड़ पालन के अंदर या सामूहिक विपणन की बात करा या मूल्य संवर्धन की बात करा तो यहाँ की कई कई महती भूमिका छे इस श्रृंखला के मायने की कर या को ज्ञान रा कर या को उपयोग कर एक समूह बना एक जो भेड़ पालक भाई या बहन छे वह आपकी आर्थिक स्थिति ने और की तरीका से मजबूत कर सके छे और कया और लोगों ने जोड़ सके छे व्यवसाय में।
0: जी जी बिल्कुल बहुत ही सही बात थे कि क्योंकि वो अभी डिजिटल युग है, क्रांतिकारी डिजिटल युग है
1: बिल्कुल,
0: और तकनीक है और जो किसान भाई पशुपालक तकनीक यदि दूर रह और या फिर वैज्ञानिक तरीके भेड़ पालन भी दूर रह तो बिंगो जो को है परंपरागत पालन बिंगो बिंगी आय कौन बढ़ सके, बिना तकनीक अपनानी ही पड़ सी। और जो तकनीक है अब जिया मोबाइल है, अभी मोबाइल पर आप बैठा बैठा मौसम की के जानकारी है, भेड़ पालन में किसी बीमारियां आ रही है, किसा टीकाकरण करना है, पशु स्वास्थ्य संबंधी और कोई जानकारी है, वैज्ञानिक सलाह है, बाजार भाव है, ये सगड़ा मोबाइल पर उपलब्ध है। तो मोबाइल के माध्यमों और प्लस जो वैज्ञानिक तरीके जो को भेड़ पालन है वो जी मारो संस्थान है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आवे, वो समय समय पर किसानों के लिए जगह और भी वैल्यू चेन का जगह एक्टर है वहां खातर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावे। तो भी मैं किसान भाइयों ने आए और किया मूल्य संवर्धन आप कर सका भेड़ पाल भेड़ का जगह है विभिन्न उत्पाद का बांगो प्रशिक्षण ले आपकी क्षमता विकास कर और आपको व्यवसाय चालू कर सके जनाब जो है बांगी आय ज्यादा में ज्यादा बढ़ सके।
1: तो आप बता रहे जो भाई नई तकनीक और जो डिजिटल युग में कदम से कदम मिलार ई व्यवसाय ने और भी बेहतर तरीका से करो जा सके, पर कई जगह मका भेड़ पालक भाई बहन छे वे या तो कम पड़ेड़ा छे या संसाधना को अभाव छे, तो वाना आगे बढ़ावा के लिए और प्रोत्साहित करवा के लिए की कर शुरुआत करी जा सके। तो
0: अभी बहुत बढ़िया बात किए थे क्योंकि जो को भारत है वो अभी लगभग युवाओं को देश बनने वालों है और जका आपा के जगह युवा पीढ़ी है वो यदि वैज्ञानिक तरीके हूँ सही हूँ ज्ञान आपकी क्षमता और तकनीकी विकास यदि वो लेर चाल है तो वो इन्हें एक धंधे के रूप में अपना सके। जगह में यदि कोई भेड़ पालन बकरी पालन हमें जो भी नस्ल सुधार या मूल्य संवर्धन कोई भी काम करना चाहे तो भी मैं भारत सरकार जगह है माने 50% लेकिन इनमें जरूरत है कि माने खुद ने आगे आए और इन जगह इन व्यवसाय ने आपको यहाँ ना मानो कि यार समाज में कई वह इमेज रही, इन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ अपने देखते हुए और इन्हें वैज्ञानिक तरीके यदि करे तो आगे आने वाले युवा और मां खातर वो बहुत ही बड़ो लाभदायक एक व्यवसाय स्थापित हो सके।
1: डॉक्टर साहब अबार आप बात ही कर रहे हैं भाई डिजिटल होनी चाहिए जे और आधुनिकता के साथ में ही काम ने शुरू करे जा सके जे, पर जो छोटा छोटा पशुपालक छे वे ही काम ने शुरू करबो चाहे तो आपकी जो संस्थान छे उनकी तरफ से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम और ये चलाया जावे छे और की तरीका से जुड़े जा सके छे, क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव में आप सक्षम होता है भी काम कर कुन पावा, तो थोड़ी सी जानकारी दे।
0: बिल्कुल सही बात की है क्योंकि जानकारी के कारण यदि कोई पीछे रह जाए तो आ बात बिल्कुल सही कहने इन वास्ते मैं आपके जितना हमारा किसान भाई और पशुपालक आग्रह करूं कि यदि ई बारे में थाने कोई भी वैज्ञानिक जानकारी लेनी है तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर समय समय पर अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कई इसकी मारी जो है वो शेड्यूल का सब प्लान एक नाम हुआ है जो कि आप एससी के किसाना खातर है, एक ट्राइबल सब प्लान है जो एसटी खातर है और जो जनरल ओबीसी का है वहां खातर भी आप जो है अलग अलग टाइम पर 10 दिन को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करा। इनके अलावा जो का आत्मा जो विभाग है आप जो पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार है वे भी माने समय समय पर जो है स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करे और जो बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आवे भी हिसाब में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम अविका नगर में आयोजित करावा। इनके अलावा मैं पशु स्वास्थ्य शिविर एनिमल हेल्थ कैंप फील्ड डे और जो पशु प्रदर्शन किसान मेला ये भी हमारे संस्थान जो है वो टाइम टू टाइम किसानों

0: भेड़ पालकों के लिए आयोजित करे है। तो कोई भी यदि किसान चाहे तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सके, हमारी वेबसाइट भी है। और जो विभिन्न आप जो यहाँ थे डिजिटल की बात करे वहाँ तो हमारा विभिन्न सोशल मीडिया चैनल भी है, जी हाँ, ट्विटर पे भी है, मैं हाँ, यूट्यूब पर हाँ, फेसबुक पर हाँ, लिंक्डइन पर हाँ। तो कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम कोई भी युवा भाई बहन CSWR अविका नगरों कांटेक्ट कर आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर सके है। इनके अलावा मैं जगह अच्छा किसान है बन है, समय समय पर उन्नत क्वालिटी का मेंढा भी जो है भी प्रोवाइड करा।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से आप मां का जो पशुपालक भाई चाहे जो किसान भाई बहना चाहे वाने बता रहे छो, और जद आपनी बात अब समाप्ति की ओर चाहे तो कई जो बात जो कि आप मां का पशुपालक भाई ने मां का किसान ने कहबो चाहो ताकि वे और प्रोत्साहित हो वे, लोगों ने भी जागरूक करे और इस संस्थान से भी जुड़े और आपको जो काम चाहिए पशुपालन को उन्हें विस्तार से कर आपकी जो आजीविका को साधन चाहे उन्हें मजबूत करे।
0: देखो किसान भाई और पशुपालक बहना खातर मैं कई चीजें कहना चाहूँ कि एक तो आपकी स्थानीय परिस्थितियां के अनुकूल जगह स्वस्थ और गुणवत्ता पूर्वक जगह पशु है बांगो ही पालन करो
1: जी।
0: दूसरी बांगो संतुलित पोषण टीकाकरण चाहे कृमि नाशन या बांगो मतलब नियमित स्वास्थ्य देखभाल करो क्योंकि बचाव ही उपचार है। बातचीत ध्यान रखो। तीसरी थारे मेमना की वृद्धि किया है बांगे जीवित रहने की दर कितनी है बांगे रिकॉर्ड मेंटेन करो। आज थे देखा करो जितना भी बाजार में प्रोडक्ट हुए बाप रे एक स्कैनर मंडूडो है
1: जी
0: और भी स्कैन करियो आपन ध्यान पड़ जाए कि आप फसल किसे खेत की है
1: सारी तो
0: भाई। हाँ भाई जानकारी आम में भेड़ पालन है और आम में है कि देख ओ मास जको है वो प्रोडक्ट जको है इन्हें स्कैन करो तो बिंगे जको ईयर टैगिंग उड़ो भी थान ध्यान पड़ जी को किसे फार्म आए हुए और किस आए है। तो बात चीज जकी है डिजिटल टेक्नोलॉजी करनी है और चौथो जगह है ऊन और मांस की गुणवत्ता के आगे आगे थे ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के आगे आगे बिंग बाजार पर भी ध्यान दो सामूहिक हो तो समूह बना यदि थे सामूहिक विपणन मूल्य संवर्धन और बाजारों सीधो जुड़ाव रखो तो मैं मानूं कि भेड़ पालन जो है एक बहुत लाभकारी व्यवसाय साबित हो जा रहा है।
1: काश्तकार भाया डॉक्टर राजेश विश्नोई वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा आज अपना कार्यक्रम में पधारे और आपने बताया कि उन्नत भेड़ पालन में जो मूल्य श्रृंखला छे उकी काई भूमिका छे काई महत्व छे और की कर इकी जानकारी ले आपा फायदो ले सका छा। इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दे बताई डॉक्टर राजेश विश्नोई जी आपको खूब खूब धन्यवाद सा। और आशा बहन ने भी धन्यवाद देवा नरपत भाई
2: बिल्कुल
1: और कोरो धन्यवाद आपा देवा को नहीं
2: तो सुना दे चौकी से लोग रचना
1: बिल्कुल साहब।

0: तो बाबा रामदेव की पदयात्रा भी चल रही है और आपा भी अर्जी लगा दिया रेडियो के माध्यम से, गीत के माध्यम से, बच्चों की सी हरीशचंद्र शर्मा पार्टी की आवाज में। और अब मंडी की तरफ चला नरपत
1: बिल्कुल
0: भाई। सबसे पहली बात करा गेहूं की। गेहूं क्यों जो अधिकतम भाव रहे हो जयपुर की मंडी में 2630 रुपया प्रति क्विंटल, तो सारी मंडी में गेहूं रुबाव 2577 रुपया, बस्सी की मंडी में गेहूं रुबाव 2596 रुपया, और अलवर की मंडी में गेहूं को भाव रहे 2611 रुपया
1: साथ
0: प्रति
1: ही साथ
0: क्विंटल।
1: अब बात करा बाजरा की कि श्री माधोपुर में बाजरा को अधिकतम भाव है 2250 रुपये प्रति क्विंटल। जयपुर की बात करा तो 2100 रुपया प्रति क्विंटल। बाजरा की भरतपुर मंडी में भाव है 2273 रुपया प्रति क्विंटल। और आपा स्वाई माधोपुर में बाजरा की बात करा तो 2175 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से है।
0: बिल्कुल। सरसों की बात करा तो जयपुर की मंडी में सरसों रो भाव 7885 रुपया, बस्सी की मंडी में सरसों रो भाव 8095 रुपया, अलवर की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 8000 रुपया, और करौली की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 7762 रुपया प्रति क्विंटल। आपा या जो तकनीक को सहारो ले रहे इंटरनेट के माध्यम से मंडी का भाव खोजा और अपना श्रोताओं ने बताया। हाँ, और ई मंडी की बातचीत के सागे सागे कार्यक्रम रो टेम पूरा हो रहे हो किसान वाणी में। अब आज्ञा दियो चंचल और
1: नरपत सिंह ने
0: करा चाला राम राम
1: रामसा।
0: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था, कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
3: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
4: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
5: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
6: लेकिन डाइन कौन देगा?
7: जीत, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
5: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
7: 1, 2, 3 सब छुप गए ना? 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
5: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
8: मोहित पापा! अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
5: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
7: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
5: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
7: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
8: धप्पा!
7: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
5: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
7: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
9: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
10: अंदर छुपा।
7: मारिया
8: धप्पा!
9: अरे नहीं।
5: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
11: दादी दादी दादी, हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
7: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
8: सिमरन धप्पा,
11: फिर पकड़ लिया।
7: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
5: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा!
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार।
6: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
2: जी जी,
6: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
2: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
8: जी,
2: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
8: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
2: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
8: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
9: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
2: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
9: अच्छा।
2: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
6: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
9: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
6: अच्छा।
9: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
2: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
9: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
2: जी,
9: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
2: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
9: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
6: जी।
9: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
2: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
9: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
2: जी।
6: नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
10: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हीलचेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
9: अच्छा, एक बात बताओ
10: जी,
9: सरिता व्हीलचेयर का प्रयोग कब से करती है?
10: इसकी माँ ने बताया था कि व्हीलचेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
9: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
8: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
10: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
9: हाँ,
7: ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
10: जी,
7: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
10: अच्छा,
7: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
10: ऐसा विकार होता क्यों है?
7: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
10: अच्छा। हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
7: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
8: जी मैडम।
7: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
10: जी।
7: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
10: जी।
7: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
10: जी ठीक है।
6: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
10: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
11: नमस्ते।
6: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
7: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
11: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
7: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
7: अच्छा।
0: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
10: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
0: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
7: अच्छा।
0: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
10: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
0: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
10: जी।
0: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई

0: नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
1: रेनू
0: जी, इसको ये समस्या कब से है? ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
2: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है।
2: ओ।
1: क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है,
2: हुँ।
1: तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
3: जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
2: जी।
3: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
2: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
3: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
4: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
8: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप NewsOn AIR इंटरनेट के माध्यम से अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर आइए, और अगर OTT प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर जाइए। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एल्बम सॉन्ग। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रीति और पिंकी की आवाज़ में, जूमे एल्बम से, इस एल्बम सॉन्ग से। एल्बम का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, जुमे जहाँ, यह है एल्बम का नाम।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप कार्यक्रम सुन रहे हैं एल्बम सॉन्ग। अगला एल्बम सॉन्ग सुनते हैं समक द्वार की आवाज में, और एल्बम है मोहब्बत कर ले।

से बेखबर। वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है? वो कौन है

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिर चैनल। इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी दोस्तों आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग। अगला एल्बम सॉन्ग सुनते हैं नितिन बाली की आवाज़ में। एल्बम का नाम है ना जाने।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगला एल्बम है तेरे बिना। इसी एल्बम से दो बैक टू बैक गाने सुनेंगे। आवाज़ दी है अभिजीत ने।

चलिए दोस्तों, एल्बम सॉन्ग कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं अल्ताफ राजा की आवाज़ में। एल्बम का नाम है तुम तो ठहरे परदेशी।

तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा की आवाज़ में, और एल्बम का नाम था तुम तो ठहरे परदेसी। एल्बम सॉन्ग का ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा की आवाज़ में चंद

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर, और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा को।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा की आवाजों में चंद लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: میں سر فیروزی प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने कहा चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा बिहार पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र झारखंड उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि तीन दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के तीन प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है
1: साथियों अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा आत्मनिर्भर

0: गुणवत्ता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर

0: फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 MHz की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय रात्रि की ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में चंद गजलें। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 9:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

आपने इजाजत फिल्म में आशा भोसले को सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया किनारा फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है गुलजार ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सेटाइल गायिका आशा भोसले पर। आठ सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हां, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी।

शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। आशा भोसले की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी माडगुड़कर, बाभ बोरकर, आरती प्रभु, शांता शेड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती हैं, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है।

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहने।

साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसे ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैन और करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ मिराज।

चांद के साथ साथ सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल। सामईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आबशार-ए-गजल।

आशा जी की आवाज के कायल, उनकी आवाज के दीवानों को मिला था उसके बाद एक नजराना। एल्बम का नाम आपकी आशा।

आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का। एल्बम का नाम जानम समझा करो।

0: करो।
1: 80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

पड़ोस में ही नहीं चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने, और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आरडी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

कानों में शहद घोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का ये गाना।